कहता है दिल जीरा जरा. वेलकम वेलकम वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, यू ट्यून टू जीरा जरा विद आरजे सौमिल. और अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट आ रही है आपकी. इनफैक्ट ब्रेक पे जाने से पहले मैंने झूम के बिजली कड़काई थी. वी एवर डिड यू कैच द थंडरस्टॉर्म दैट हैपेंड अ कपल ऑफ डेज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग 6? आई गॉट कॉट इन द थंडरस्टॉर्म. आई लेफ्ट होम एंड इट वॉज जस्ट ड्रिजलिंग, बस छींटे पड़ रहे थे मुझ पर, और 5 मिनट के अंदर इतना माहौल बदल गया. आई सॉ ट्री लिम्स ब्रोकन ऑन द रोड विद इन 5 मिनट्स, ऑल विद इन 5 मिनट्स. द विंड वॉज गशिंग, रेन वॉज पोरिंग लाइक एनी थिंग, एंड माई गुडनेस झूम के बिजली कड़की. इट वॉज मिनिमल विजिबिलिटी, कुछ दिख ही नहीं रहा था. एंड आई कॉल्ड इन एंड आई सेड यू नो व्हाट, इफ यू डोंट हैव टू लीव होम प्लीज डोंट, जस्ट ड्राइव सेफ एंड स्टे होम एंड स्टे वार्म स्टे ड्राई एंड दिस टू विल पास. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर, और सफ़ी की रिक्वेस्ट पे सुनाता हूँ आपको बरसों रे.

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

हाँ, क्या बरसी थी। इनफैक्ट हमको अभी कॉल आया और बता रहे थे हमको लिसनर, शी इज़ ड्राइविंग राइट नाउ एंड एब्सोल्युटली शी सेड ऐसी बारिश हमने देखी नहीं डैलस में। एंड आई कैन टेल यू आई हैवन्ट सीन एनीथिंग एक्सपीरियंस्ड, सीन क्या एक्सपीरियंस भी नहीं किया था। एंड दिस वन वॉज लाइव। आई स्टेप्ड आउट ऑफ द होम अराउंड 6:30, आई हैड टू बी समवेयर एट 7, सो आई वॉन्टेड टू बी देयर 10 मिनट्स अर्ली। घर से बाहर निकला, थोड़ी बहुत रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, और जैसे ही 5 मिनट हुए, माई गुडनेस क्या बताऊँ मैं आपको। चलिए लेके चलता हूँ आपके उनकी फरमाइश पे ये गाने की ओर। थोड़ा स्लो गाना है, दो दो लाइन सुनाऊंगा, उसके बाद स्विच इट अप अगेन।

0: जी हाँ, दैट वाज ना खजरे की धार, टेकन फ्रॉम सुनील शेट्टी मूवी, पंकज उदास की, पंकज उदास का गाना. कैन यू बिलीव आई वाज, वी हैव अ लाइव कॉलर, हु डू वी हैव ऑन एयर विद अस?
1: हाय, दिस इज नेहा.
0: हाय नेहा, हाउ आर यू डूइंग?
1: डूइंग ग्रेट.
0: तो बताइए, आप मुझे बता रहे थे बारिश के बारे में.
1: हाँ जी, तो ये टाइप की बारिश आपने, आई डोंट नो आपने एक्सपीरियंस करी कि नहीं करी, बट मैंने बहुत एक्सपीरियंस करी है मुंबई में. एंड इट्स लाइक आप घर से निकलते हो पूरे ड्राई, अच्छे से रेडी होके, एंड विद इन 10 मिनट्स आप पूरे वेट हो गए होते हो, एंड देन अनदर 20 मिनट्स में आप वापस से ड्राई हो जाते हो. जस्ट कीप वॉकिंग एंड कीप गोइंग वेर एवर यू आर गोइंग. तो इट्स लाइक दैट, मुंबई की बारिश हमेशा ऐसी रहती है.
0: एक बात मुझे बताइए, मैं भी मुंबई में था, मैं अंधेरी में रहता था, बट मैंने ऐसी बारिश मुंबई में एक्सपीरियंस की नहीं. बट चलो, भीगना तो समझ गया मैं, 5 मिनट 10 मिनट में आप भीग गए. सूख की कैसे जाते हो इतनी जल्दी से?
1: नहीं, गर्मी होती है भाई, बहुत गर्म हो जाता है. तो ये डैलस को देख के ना कभी कभी मुझे पूरा मुंबई का फील आता है. इट्स जस्ट डैलस में जो ठंड पड़ती है वो मुंबई में वैसी ठंड नहीं होती है. अदरवाइज वेदर एकदम अनप्रेडिक्टेबल है मुंबई का भी, स्पेशली इन द मॉनसून सीजन.
0: यस, बॉम्बे में कहाँ, बॉम्बे में किस तरफ से? आई वाज इन अंधेरी.
1: मैं आई वाज इन गोरेगांव.
0: गोरेगांव, वाओ.
1: एंड आई यूज्ड टू गो टू कांदिवली फॉर माय जॉब.
0: अरे वाह, कांदिवली. सो हम तो अगले स्टेशन पे ही थे.
1: यस यस.
0: चलिए मैं लगाता हूँ आपके लिए. कौन सा गाना लगाऊं मैं?
1: टिप टिप बरसा पानी.
0: Tip to Barsa Pani coming for you, Neha. Thank you for calling in. And any message for the listeners of Phanesha on Jile Zara?
1: Keep enjoying and keep loving this life. This is one and beautiful.
0: Absolutely. Thank you so much, Neha.
1: Thank you.

जी हाँ, हमने आपको दो परकशन वाले सॉन्ग सुनाए, एक में नगाड़ा बजा और दूसरे में ढोल बजने लगा था। और जिसमें लिया था हमने, वेल आई वाज टेलिंग यू अर्लियर कि जैसे मैंने बताया था आपको कि हर सॉन्ग में, हर हिट सॉन्ग में वन ऑफ दीज थ्री इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ अ बिग इन्फ्लुएंस। पिछले दो सॉन्ग में आपने देखा था परकशन, ढोल और नगाड़े का, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का इन्फ्लुएंस था। अगले सॉन्ग में आप स्ट्रिंग्स पे फोकस कीजिएगा। चलिए उससे पहले मैं बताता हूँ कि ज़रूरी जानकारी, अगर आप मार्केट में हो और आपको घर लेने का आप सोच रहे हो तो ड्रीम होम मॉर्गेज के बारे में बताता हूँ आपको। ये ड्रीम होम मॉर्गेज हैज़ बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998। ये 98 से ये हेल्प कर रहे हैं। लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड देयर एक्सपर्ट टीम डिलीवर स्ट्रेस फ्री एंड टेलर्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस। तो अगर आपको घर लेना हो या फिर आपको घर के बारे में, आप घर के बारे में सोच रहे हो और शुरू करनी हो आपका घर की सर्च, चाहे वो हो आपका प्राइमरी होम, फर्स्ट टाइम होम बाय या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जी हाँ, आप कॉल कीजिए उनके ऑफिस को। ड्रीम होम मॉर्गेज के ऑफिस का नंबर है 9722455626, 9722455626। आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। उनकी वेबसाइट है dreamhomemortgage.com। जी हाँ, उनकी वेबसाइट है dreamhomemortgage.com। चलिए लेकर चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। और शशि, व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग यू पिक्ड यार, मज़ा आ गया ये सॉन्ग। दिस इज अनदर सॉन्ग विच इज़ पुरानी दाल पे नया तड़का, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल रीमिक्स दिस इज। होपफुली दिस इज द रीमिक्स दैट यू रिक्वेस्टेड। एंड चलिए लेके चलता हूँ आपको इस गाने की ओर। द सॉन्ग विल टेक अस टू द ब्रेक। एंड अगर आपको कुछ सुनना हो, कुछ सुनाना हो या फिर किसी पे जादू डालना हो, कॉल कीजिए। स्टूडियो का नंबर 9722355555। चलिए हम चलते हैं पन्ना की तमन्ना के बारे में बताता हूँ आपको इस गाने में।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
2: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
13: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे। We got

Yeah, that was Welcome to the Jungle, Disha Patni and Akshay Khanna. Akshay Kumar, not Khanna, sorry, Akshay Kumar. मैं खिलाड़ी के बारे में बात कर रहा था और चलिए लेके चलता हूँ आपको, रिक्वेस्ट आई है इस गाने की और चलिए लेके चलता हूँ आपको दुबई की ओर.

हाँ, जुर्म सिर्फ इतना है कि उनसे प्यार करते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं और जान से निकलते हैं। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की, और उससे पहले बताता हूँ मैं आपको एक म्यूजिकल डुओ के बारे में। विशाल शेखर लाइव जी सुना ही होगा आपने, और बहुत धूम मच रही है इस इवेंट के बारे में। डैलस बॉलीवुड फैंस, योर प्लेलिस्ट इज अबाउट टू कम अलाइव। विशाल एंड शेखर, द डुओ बिहाइंड सम ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड सुपर हिट्स इन द लास्ट टू डेकेड्स, आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर टू डैलस। ये होने वाला है इवेंट संडे जुलाई 12 को। जी हाँ, 12 को होगा, एट कर्टिस कलवेल सेंटर एंड गार्डन, एंड टिकट्स आर अवेलेबल राइट नाउ फॉर सेल। जी हाँ, आप टिकट्स चाहिए तो आप पहुंच जाइए cashpatelproductions.com, कैश इज स्पेल्ड KASH, cashpatelproductions.com फॉर विशाल शेखर लाइव। होने वाला है कर्टिस कलवेल सेंटर जुलाई 12th।

जी हाँ, सूरज डूबा है और सूरज डूबने ही वाला है मेट्रोप्लेक्स में। 8:37 इज द सनसेट। एंड चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर, और चलते चलते चलते लेके चलता हूँ आपको नदियों पार। आई मीन दिस इज अ सॉन्ग बाय जाह्नवी कपूर एंड एब्सोल्यूटली अमेजिंग, शी किल्ड इट इन द सॉन्ग, टेकन फ्रॉम द मूवी रूही। एंड दिस सॉन्ग विल टेक अस टू द ब्रेक, एंड ब्रेक के उस पार फिर से मैं मिलूंगा आपको। विल पिक अप सम पेस इन द नेक्स्ट आवर।

And because Aina Jagsalaj taken from Cocktail to this new song just dropped about 19 hours back, and it's already gotten close to 2 million views. And Jagsalaj, this is the same song that even Anoop Chalota has sung. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर, और रफ्तार बढ़ाते हुए लेके चलता हूँ इस गाने की ओर. रिमाइंड करता हूँ आपको कि यू विल गेट अ चांस टू विन द गिव अवे फ्रॉम फन पिज़्ज़ा किचन इन द नेक्स्ट सेगमेंट, जिसकी हिंट आपको मिलेगी इस सेगमेंट में. सो कीप ट्यून्ड राइट हियर, यू ट्यून इन टू जिले ज़रा विद आरजे सोमिल.

माय ऑल टू टेकन फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। और आई जस्ट सॉ दिस मूवी कॉकटेल टू, देखी मैंने अभी परसों ही देखी, कल देखी मैंने मूवी परसों देखी थी एक्चुअली, एंड लव्ड, कल देखी थी मूवी। और आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम लविंग लव रंजन मूवीज। ऑफकोर्स इन्होंने पहले भी मूवीज़ अच्छी अच्छी मूवीज़ लाए थे, जैसे प्यार का पंचनामा टू, सोनू के चिट्टू की स्वीडी, एंड देन ही वेंट इनटू अ फेज विद मूवीज़ लाइक तू झूठी मैं मक्कार, जो मूवी ज़्यादा चली नहीं क्योंकि स्टोरी तो थी नहीं, बस इट वॉज ओवर द टॉप सीनिक विजुअल्स एंड नथिंग टू बैक इट अप। बट कॉकटेल टू की बात ही अलग है। आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ गुड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस, एंड आई एब्सोल्युटली वॉज लविंग द मूवी एंड द nuances दैट दे डिपिक्ट इन द love stories of today is absolutely amazing, taking you to the world of Cocktail 2.

जी हाँ, मैं नाचू तब तलक, मैं हूँ आपके साथ 9 बजे तक, और हम लोग साथ में नाचेंगे तब तलक जरूर से। बोल चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की। और रिक्वेस्ट आई थी इस गाने की, और उन्होंने बताया था कि यार रीमिक्स वाला गाना, नया वर्जन वाला गाना नहीं बजाना, पुराने वर्जन जो चुनरी चुनरी सॉन्ग है, विच वॉज पिक्चराइज ऑन द गॉर्जियस द फेचिंग द वन एंड ओनली सुष्मिता सेन एंड सलमान खान। चलिए वो गाना सुनाता हूँ, थोड़ा दो लाइन सुनाता हूँ उस गाने की ओरिजिनल वर्जन, एंड देन विल गो टू द न्यूर वर्जन ऑफ द सॉन्ग ट्यू।

taken from Hai Jawani To Ishq Hona Hi Hai, which was brought to you by Fanisha Films. Of course, चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर और सुनाता हूँ मैं आपको ये गाना. This one is a blast from the past, from the yesteryears. मूवी आई थी अर्ली 90s में, मूवी का नाम था प्रेम देशम. तेलुगु में आई थी प्रेम देशम, खादल देशम वॉज तमिल, एंड दुनिया दिल वालों की. चलिए उस गाने की ओर लेके चलता हूँ मैं आपको और

जी हाँ, लाइक द टाइटल ऑफ द मूवी सेज, दुनिया दिल वालों की प्रेम देशम, हेलो डॉक्टर, दिल की चुड़ी हो गई। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। और द सॉन्ग जस्ट ड्रॉप्ड ऑन द 17th ऑफ जून एंड दो ही दिनों में इसने 17 मिलियन व्यूज गैदर कर लिए। चलिए लेके चलता हूँ आपको बंदूक की ओर। जिब्रन, योर सॉन्ग कमिंग योर वे।

जी हाँ, म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, जाने का वक्त हो रहा है मेरा, और म्यूजिक स्टार्ट नहीं, म्यूजिक बंद करने का टाइम हो रहा है मेरा। बट कल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, कल है फादर्स डे, और फादर्स डे के लिए आपके क्या प्लान्स हैं मुझे बताइए। और टुमारो एक्चुअली वी ऑल्सो सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे, तो फादर्स डे क्या होता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे तो हमने यहाँ पे सभी प्रोग्रामिंग करके रखी है। और यू स्टे ट्यून्ड एट फनेशिया 104.9 FM, वेरी गेट ऑल ऑफ द क्लास रन ऑफ द खास। संडे सारा दिन यहाँ पे वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट होगा, और फादर्स डे के अवसर पर यहाँ पे अच्छे अच्छे गाने और अच्छे अच्छे रिक्वेस्ट आपसे ली जाएगी, और बहुत सारे इंटरेक्शन होने चाहिए। इनफैक्ट हमारे बहुत ही अच्छे कॉलर है वसीम भाई, उन्होंने कॉल करके हमको बताया कि उनके उनके किड्स आयान और दीवा सुन रहे हैं, और वो लोग विश कर रहे हैं अपने पापा को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फादर्स डे। सो फादर्स डे के अवसर पे ये गाना तो बनता ही है, चलिए लेके चलता हूँ आपको। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे। एंड अगर मैं अपने ऑब्जर्वेशन से कह सकूँ तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर फादर्स टू बी, एंड ऑल्सो सिंगल मदर्स, सम ऑफ द बेस्ट फादर्स दैट आई हैव सीन आर सिंगल मदर्स। चलिए, आयन और दीपा की ओर से वसीम भाई की ओर चल रहा है ये गाना, ऑन द ओकेजन ऑफ फादर्स डे।

such a beautiful dedication from Ayan and Deepa to Waseem bhai on the occasion of Father's Day. चलिए लेके चलता हूँ आपको ऐसे ही और एक गाने की ओर. जैसा मैंने बताया, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि सम ऑफ द बेस्ट फादर्स दैट आई हैव सीन आर द सिंगल मदर्स हु प्ले द रोल ऑफ अ मदर बट ऑल्सो पिच इन टू बी देयर एज अ फादर फिगर फॉर देयर किड्स ग्रोइंग अप, स्पेशली वन देयर यंग. एंड ऐसे ही एक गाने की ओर लेके चलता हूँ मैं. गाने का नाम है फादर फिगर एंड आई एब्सोल्युटली लव द सॉन्ग. Fell in love with the song the first time I heard this song, and it is by the late George Michael. And beautiful slow track, but agar lyrics pe aap gaur farmaiyega to dil ko chhu ke aar paar nikal jayenge. Lyrics taking you to the world of George Michael. The song is called Father Figure.

That was George Michael, and Father Figure was the name of the song. And some of the lyrics were absolutely touching for me. And I also wanted to wish my father, who is turning 90 this month, a very happy Father's Day. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर और बताता हूँ मैं आपको. In fact, you know what? मैंने बताया था लास्ट सेगमेंट में कि यू गेट अ चांस टू विन फन पिज्जा किचन गिव अवे. सो इफ यू आर क्रेविंग समथिंग चीज़ी विद अ देसी ट्विस्ट, फन पिज्जा किचन इज़ वेयर फ्लेवर बीच द फायर. अगर आप वेजी लवर्स हो तो वहाँ पर आप ट्राई कीजिए अचारी पनीर पिज्ज़ा, और अगर आप मीट लवर हो तो आपको मिलेगा तंदूरी चिकन पिज्ज़ा, विच इज़ प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम तंदूर फॉर योर टेस्ट बड्स. सो वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, देयर इज़ अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू at Fun Pizza Kitchen, serving at two different locations, Frisco and Colony. For more details, you can go to their website, which is funpizzakitchen.com, and you have a chance to win a $10 gift card by answering a simple question. And आपको बताना ये है कि मैंने पिछले सेगमेंट में कॉकटेल 2 के दो गाने बजाए थे, कौन से दो गाने हैं. अगर आपका जवाब सही निकला तो आप जीत सकते हो $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. आपको बताना है मैंने कॉकटेल 2 के कौन से दो गाने बजाए थे पिछले सेगमेंट में.

जी हाँ, दैट वाज अंग्रेजी बीट बाय यो यो हनी सिंह, टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल कॉकटेल। चलिए, जाने का वक्त रहा मेरा, चलने का वक्त रहा मेरा, और चलते चलते आखिरी दो गाने सुनाते चलता हूँ मैं आपको। और थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड प्लेइंग अलॉन्ग ऑन दिस ब्यूटिफुल जीले जरा शो ऑन दिस सैटरडे नाइट।

यहाँ जिसने प्यार ना किया टेकन फ्रॉम द मूवी थम्मा विच वॉज अ हॉरर कॉमेडी मूवी पिक्चराइज्ड ऑन रश्मिका मंदाना एंड आयुष्मान खुराना। चलिए लेके चलता हूँ आपको आखिरी गाने की ओर और दीजिए मुझे आप इजाज़त, फिर से मिलूंगा मैं आपको अगले वीक ऑन जीरे ज़रा सैटरडे नाइट प्राइम टाइम। वी गेट योर फीट टैपिंग, वी गेट योर ब्लड फ्लोइंग एंड वी गेट यू रेडी फॉर द पार्टी दैट यू आर हेडिंग आउट टू।

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels, tradition crafted, style defined.
2: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
3: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401, प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.

ਤਾਲੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਤਾਲੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ

0: Form and get your tickets today.
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
2: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं।
3: बेटा 95% आए?
5: हाँ मम्मी।
3: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
6: मेरा?
3: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
6: वो
0: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
7: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, FunAsia.
3: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to FunAsia Radio.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
2: I'm loving the music.
1: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Fanasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Fanasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: Club Fanasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dances.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
5: Beta, 95% aaye?
6: Haan, mummy.
5: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
7: Mera?
5: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी.
9: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, your growth, our strategy.
7: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Yeah, this is Shakti Kapoor, and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: de hoy.
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं

0: वहां से थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
4: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: मैं तेरी याद मुड़के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं।
2: दिल को चुक गई।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels, tradition crafted, style defined.
2: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
3: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता दस दिन अगले ट्यूसडे
4: तारीख पर तारीख
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट आज बुखार आज डॉक्टर आज इन्फेक्शन आज डॉक्टर आज एनुअल चेकअप आज डॉक्टर प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग प्लेनो फ्रिस्को मकिनी ऑबरी
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259
6: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी सीता की रसोई जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी और अब वही पवित्र स्वाद वही भाव श्री अयोध्या भवन में ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को
7: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक
6: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग ओपन डेली फ्रॉम 7 AM लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो श्री अयोध्या भवन वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी
8: आर यू सीकिंग क्लैरिटी इन लाइफ वंडरिंग व्हाट डेस्टिनी हैज इन स्टोर फॉर यू
9: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
8: दैट मैजिक रिमूवल Ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.

Sunday Gupshup ke tamam shrotaon ka hardik swagat. A warm welcome to all the listeners of Sunday Gupshup on 104.9 FM Fun Asia Radio. Aur main hoon aapki host RJ Ekrup. Aap sabka tahe dil se swagat karti hoon. Today is the day which is all about celebrating the men who guide, support and inspire us. So happy Father's Day to all the supportive men in our lives. Aaj पिता दिवस है आप सबको इस दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत ही सुंदर अच्छा दिन है जून 21st विच इज़ टुडे इज़ अ थर्ड संडे तो जून का जो थर्ड संडे होता है उस दिन पिता दिवस मनाया जाता है फादर्स डे मनाया जाता है और आज का जो दिन है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सभी मेन जिन्होंने हमें गाइड किया है सपोर्ट किया है एंड इंस्पायर करते हैं नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली सो हैप्पी फादर्स डे टुडे इज़ अ वंडरफुल डे सेलिब्रेटिंग डैड सेलिब्रेटिंग फादर्स एंड फादर लाइक फिगर्स एंड द मेन दैट हैव कंटिन्यूड टू इंस्पायर अस ऑलवेज अ वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द लिसनर्स आज लाइक आई सेड बहुत सुंदर दिन है इनफैक्ट आज तो योगा डे भी है जून 21st विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर सो बहुत सारी खास चीज़ें हैं आज के दिन मैं एक रूप शो कर रही हूँ आज यहाँ पर संडे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आती हूँ और आपके फ़ोन कॉल्स फटाफट से आने लग जाते हैं 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो ये एक रूटीन है ये एक ट्रेडिशन सा ही है कि यहाँ पर इतने सालों से मैं ये शो कर रही हूँ एंड दिस शो इज़ अ पार्ट ऑफ मी एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो हम दोनों बहुत इंटरट्वाइंड हैं एक दूसरे के साथ एंड जो है आइडेंटिटी बन चुके हैं एक दूसरे की सो ये शो 13 साल से आ रहा है और कितने ही फादर्स डे यहाँ पर मनाए बोल 13 हो जाएंगे फादर्स डे मनाए और आज भी ये एक इतना सुंदर दिवस इतना ऑस्पिशियस डे इतना अच्छा दिन तो हैप्पी फादर्स डे आप सबको आप सबके पिताजी के लिए 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो कीप द कॉल्स कमिंग इन आई एम हियर अंटिल 10 o'clock 104.9 FM फन एशिया रेडियो

0: दिस और दैट, यानी कि आर पार इस फिल्म का नाम 1954 में आई थी. ये गुरुदत्त साहब की बहुत अच्छी फिल्म, ओपी नैयर का म्यूजिक, एंड आई एम श्योर आप पहचान गए होंगे. ये म्यूजिक बहुत ही टिपिकल और एक बड़ा पेक्यूलियर साउंडिंग ओपी नैयर साहब म्यूजिक देते थे. आशा जी की आवाज़, बिकॉज शी हैड, वेल एक्चुअली गीता दत्त जी की आवाज़, आई टेक इट बैक, दिस इज़ गीता दत्त सिंगिंग, एंड गुरुदत्त ने इस फिल्म को बनाया था. ये बहुत ही वेल नोन कपल हुआ करता था, बहुत ही टैलेंटेड, एंड इन्होंने इंडस्ट्री को काफ़ी कुछ दिया. गीता दत्त जी, जिन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल सॉन्ग्स गाए, और ये भी उनमें से एक, ओपी नैयर साहब का म्यूज़िक, मजरू सुल्तानपुरी के लिरिक्स. इसमें जॉनी वॉकर थे, और ये जो गीत है, ये श्यामा एक एक्ट्रेस होती थी, उन पर फिल्माया गया. शकीला भी थी इस फिल्म में, जगदीप, जगदीश सेठी, सारे ही बहुत अच्छे एक्टर्स इस फिल्म में थे.
1: प्यार में जरा संभलना, हाँ,
0: आई थिंक ये सॉन्ग शकीला जी पर फिल्माया गया है, बट अगर आपने ये सॉन्ग सुना है, आप अभी मेरा शो सुन रहे हैं, तो डू कॉल इन एंड लेट मी नो कि ये वाला जो सॉन्ग है ये किन पर फिल्माया गया है. आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू. शो कर रही हूँ 10 बजे तक, जस्ट अ लिटल रिमाइंडर. अब जो मैं अगला सॉन्ग लगाऊंगी वो हमें लेकर जाएगा ब्रेक की तरफ. इट इज़ ऑलमोस्ट 7 hours 26 minutes एंड ऑलमोस्ट 30 seconds. तो बस ये जो नेक्स्ट सॉन्ग है ये थोड़ा सा पाँच मिनट का है. इट विल टेक अस इनटू द ब्रेक एंड देन आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल्स. कीप द कॉल्स कमिंग इन. दिस इज आरजे एक रूप. आज ऑफकोर्स लाइक अदर संडेज आई एम हियर फॉर 3 hours as well until 10 o'clock.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: I'll marry you, so Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi.
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
7: इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
16: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
17: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
16: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
18: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
19: इन प्लेनो.
18: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
5: बेटा, 95% आए?
3: हाँ मम्मी.
5: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
18: मेरा?
5: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
18: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज. विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी.
0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
8: छोटा सा मेरो मदन गोपाल. DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha from June 28th through July 4th, 2026. Experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.

स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। 7:36 हो गए स्टूडियो के क्लॉक में। पहली ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। शो 10 बजे तक आता है। संडे गपशप संडे सुबह 7 से 10। 9722355555 कीप द कॉल्स कमिंग इन। हमारी जो है आप हमारे जो लिसनर्स हैं आप सबको फादर्स डे पिता दिवस की बहुत अच्छी अच्छी सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं मीन्स अच्छी अच्छी गुड विशेज। एंड टुडे is a lovely day, multiple significances हैं आज के दिन पर। June 21st is the date 2026, यानी कि बिल्कुल middle of the month as well as बिल्कुल मिडल ऑफ द ईयर कह सकते हैं कि हम अभी हैं। और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में सीज़न जो है और भी गर्म होने वाला है सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद फॉल पतझड़ एंड देन जो है सर्दी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ द रेस्ट ऑफ द ईयर लुक्स लाइक नेक्स्ट 6 months। एंड जो है अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं गर्मियों की। किड्स आर होम, स्टूडेंट्स आर होम, एंड देन धीरे धीरे जुलाई एंड में, फिर August ke beginning mein, middle of the August, every student will be back in their school, back to their schools. My Time Equity, which is led by CPA Sudhir Pai, helps individuals and families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities, and alternative investments. Whether you are planning for long-term wealth, retirement, or growing your investments, My Time Equity offers personalized solutions designed around your goals. Jo aapke goals hain, wohi CPA Sudhir Pai ke bhi goals hain. Wo aapke goals ko जिस तरह आप क्यूरेट करवाना चाहते हैं वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पर्सनलाइज्ड अटेंशन देते हैं और पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस भी निकालते हैं वो आपके गोल्स के लिए। सो डेफिनेटली गेट इन टच विद सुधीर पाय। हिज फोन नंबर इज 4697021272, या फिर आप उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। mytimeequity.com is the website. हमारे लिसनर जो कि ये वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम झुक गया आसमान, उसी का टाइटल ट्रैक। उस दिन मैं शो कर रही थी तो मुझे किसी ने पूछा कि आप पंजाबी में झुक गया आसमान को क्या बोलोगे। तो मैंने तो बोल दिया जो भी मुझे समझ में आई, पर उन्होंने कहा नीवे हुए बदल, नीवे होण बदल। उन्होंने ये मुझे बताया झुक गया आसमां का। सो ये लीजिए, आई डोंट नो हमारे वो वाले लिसनर सुन रहे हैं या नहीं, बट पंजाबी में इसको कहेंगे नीवे हुए बदल।

0: इतने ब्यूटीफुल टी गार्डन्स के थ्रू ये ड्राइव करते हुए जा रहे हैं राजेंद्र कुमार, जिनको जुबली कुमार का खिताब मिला हुआ था. इनकी हर फिल्म एटलीस्ट 25 वीक्स के लिए थिएटर्स में बहुत सक्सेसफुली रन करती थी. दिस फिल्म दैट केम आउट इन 1968, झुक गया आसमां. लेख टंडन जी ने इस फिल्म को लिखा था, राजेंद्र कुमार थे इसमें, सायरा बानू जी थी इसमें, प्रेम चोपड़ा भी थे और शंकर जयकिशन का म्यूज़िक इस फिल्म के लिए. बहुत ही अच्छा सॉन्ग जिसको गाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने. मूवी इतनी अच्छी थी, अगर आपने नहीं देखी या बहुत टाइम हो गया है इस फिल्म को देखे हुए तो ज़रूर देखना. दिस वॉज सच अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म और इसमें सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया था. आई वॉच्ड इट आई गेस मैनी डेकेड्स अगो. आई थिंक मैंने इंडिया में देखी थी ये फिल्म, शायद टीवी पर आ रही थी, एंड दैट्स हाउ आई वॉच्ड इट. सो आई वाज आई गेस इन माय टीन्स जब ये फिल्म देखी थी और मुझे ये स्टोरी इसकी बहुत अच्छी, बहुत कैची लगी थी.
1: लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया.
0: एल्विस प्रेस्ली का आपने वो सॉन्ग तो सुना होगा, मार्गरीटा. ये वही जो है सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन उसी सॉन्ग से ली है, स्पेशली वो जो बिगेनिंग वाला जो म्यूज़िक है. एल्विस प्रेस्ली का सॉन्ग जो है मार्गरीटा, ये वहाँ से एडप्टेशन इस सॉन्ग की आई. बट ननदलेस नाइस सॉन्ग हमारे लिसनर जिन्होंने इस की रिक्वेस्ट की. अब जो अगला सॉन्ग है वो भी सॉर्ट ऑफ ऑन द सेम लाइन्स है, इसकी भी रिक्वेस्ट आई हुई है. ये भी जो है लीड एक्टर जीप में बैठकर ही गा रहे हैं इस वाले गीत को भी. अगेन 60s का जेम, मेरे सनम इस फिल्म का नाम, 1965 में आई थी.

ये दो तीन सॉन्ग्स ऐसे हैं जिनकी रिक्वेस्ट आई हुई है, एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस कि ये सभी जो सॉन्ग्स हैं ये एक इतनी पॉपुलर जीप महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से जो बनती थी उसी जीप पर ये सारे सॉन्ग्स जो हैं फिल्माए गए हैं. एंड आई वाज रीडिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ जीप इट वाज, विलीज़ CJ3B. ये एक बहुत ही पॉपुलर रगेड व्हीकल था जिसको इन फिल्मों के गीतों में शूटिंग के लिए यूज़ किया था. इट जस्ट लुक्ड वेरी कूल, इट जस्ट लुक्ड वेरी यूनिक. वेल यूनिक तो नहीं कह सकते बिकॉज बहुत सारे हिंदी फिल्मों के गानों में ये यूज़ हुआ था, बट इट जस्ट सूटेड आई गेस द सिचुएशन, द एक्टर, दे कुड वेरी वेल इमोट ऑन इट. और कोई ऐसे सॉन्ग्स हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रॉप के तौर पर जो है इसको यूज़ किया जाता था. सो दिस वॉज अ वेरी पॉपुलर महिंद्रा एंड महिंद्रा जीप दैट वॉज विलीज़ CJ3B. एक और सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, एंड कोइंसिडेंटली दैट ऑल्सो इज द सेम काइंड ऑफ व्हीकल. द ओनली डिफरेंस इज कि इसको जो है आशा पारेख, यानी कि द फीमेल एक्टर, इज ड्राइविंग वर्सेस द मेल एक्टर. तो ये वाला जो सॉन्ग है ये शिकार फिल्म का है, धर्मेंद्र जी हैं एंड आशा जी हैं इस गीत में.

ये एक 90s का सॉन्ग है जो क्विकली सुनते हैं. इसकी रिक्वेस्ट नहीं आई, बट आई थिंक दिस वुड बी अ गुड टाइम टू इनकॉर्पोरेट दिस, बिकॉज थोड़ा ही टाइम है ब्रेक पे जाने के लिए. रिक्वेस्टेड सॉन्ग प्ले करूंगी, तो फिर जिन्होंने सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है उनको अच्छा नहीं लगेगा कि उनका जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो आधा अधूरा रह गया. बट हियर यू गो. ये भी जीप पर ही फिल्माया गया है.

0: They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
2: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, fir pooja ka saman, gifts bhi kharidne hain aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
4: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
5: Kahan? Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, pooja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
6: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
7: Is sheher ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu? Dhua dhua. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai, to kabhi naukri ki chinta. Zindagi ke raaste dhundle ho gaye hoon. To waqt hai sahi disha ka.
8: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
9: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
10: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी.
11: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
12: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
11: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज.
12: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. The Flavor Lounge, Harbhai Superhit.
13: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

आज फादर्स डे है और इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और आप सब मुझे भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, विशेस दे रहे हैं. सो डेफिनेटली आई डू वांट टू रेसिप्रोकेट द सेम गुड विशेस एंड गुड थॉट्स फॉर ईच वन ऑफ माय लिसनर. बहुत ही अच्छा सुंदर दिन है आज, और ये जो है मल्टीपल इवेंट्स हैं आज, मल्टीपल जो है डे सेलिब्रेशंस हैं. एक तो योगा डे है, June 21st इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल योगा डे. योगा की इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर हीलिंग एंड हीलिंग फ्रॉम विद इन योर सेल्फ थ्रू द नेचुरल वेज. ब्रीदिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ योगा एंड मेडिटेशन इज अ बिग पार्ट ऑफ योगा. तो ये सारी जो हीलिंग्स हैं नेचुरली ऑर्गेनिकली, योगा हेल्प्स विद ऑल ऑफ दैट. It enhances your good health, well-being and mental peace through the different, I guess, meditational as well as breathing exercises. Aur saath hi saath June 21st.

1st, which is also the longest day of the year. Aaj summer solstice hai, longest day hai, jo ki maximum number of sunlight hours hote hain, wo honge aaj. So June 21st is the longest day, aur of course aaj Father's Day bhi hai. Ye bhi ek bahut popular globally manaya jata hai. Ye ek aisa divas hai. Fathers, pita, papa, daddy, dad. तो ये सारे जो नाम हैं उस शख्सियत के लिए हैं जो हमें पैदा करते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं और जिनके साथ हम अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट उनकी प्रेजेंस में हम फील करते हैं. सो ये एक ऐसी छाया है, ये एक ऐसा हाथ है जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, दिल में बहुत सारा प्यार होता है, चाहे वो चेहरे पे नज़र आए ना आए, पर आँखों के थ्रू उनका जो प्यार है, उनकी जो ममता है वो नज़र आती है. तो ये फादर्स डे है आज, एंड हमारे सारे श्रोताओं को इस दिन के लिए गुड विशेस. इट इज़ a lovely day, full of warmth and affection. So अगर आप फादर हैं, आपके फादर के लिए, आपके लिए, आपके जीवन में जितने भी फादर लाइक फिगर्स हैं, उन सब के लिए आज का दिन है. तो be with them. अगर आपकी फिजिकल प्रेजेंस होगी उनके साथ, तो उनका दिन जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा. हमारे एक लिसनर जो कि ये वाले सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड हैंड्स डाउन मन्ना डे साहब की आवाज़ में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेडिकेशंस फॉर टुडे.

फादर्स डे के लिए बहुत सारी विशेस आ रही हैं मुझे भी, और मैं अपनी तरफ से आपको भी दे रही हूँ। फादर्स डे आज बड़ा स्पेशल डे है, स्पेशल मोमेंट है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है मेरे शो के लिए? बहुत बेनिफिशियल एक ही पर्क है मेरे शो को मिला हुआ है नेचुरली, कि जब मेरा शो संडे को ही आता है, आई एम हियर ओनली वंस अ वीक, और संडे को जो है सबसे बेस्ट जो ओकेजन्स हैं, सबसे बेस्ट जो चीज़ें जिनको हम मनाते हैं वो आती हैं। दो तो डेफिनेटली हैं ही, फॉर एग्जाम्पल मदर्स डे ऑलवेज फॉल्स ऑन अ संडे एंड फादर्स डे ऑल्सो ऑलवेज फॉल्स ऑन अ संडे। तो मुझे बहुत अच्छा गोल्डन मौका मिल जाता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि मैं आपको उस दिवस के लिए फर्स्ट हैंड राइट ऑन द डे ऑफ आपको विश करूँ। आगे पीछे तो वैसे यस, हम लोग अच्छे ऐसे सॉन्ग्स सुनते ही हैं, लेकिन इन गीतों को सुनने का मज़ा जो उस दिन पर होता है जिस दिन एक्चुअली ये ओकेजन मनाया जाता है, उसकी बात ही अलग है। हमारे एक लिसनर जिन्होंने ये वाला सॉन्ग सुनने की ख्वाहिश की।

दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है. थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू. हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है

कयामत से कयामत तक QSQT का ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग सुन रहे थे। उदित नारायण की आवाज़, आमिर खान पर फिल्माया गया। एंड ये जो है इतना आइकॉनिक एवरग्रीन सॉन्ग है, हर साल बजता है, एटलीस्ट इस दिन तो ज़रूर बजता ही है, बिकॉज़ पापा जो है पापा ने कहा है तो ये सॉन्ग ज़रूर बजेगा फादर्स डे वाले दिन। आज इनफैक्ट वो जून 21 जो मैं बात कर रही थी कि दो तीन बड़े सिग्निफिकेंट ओकेजन्स हैं आज। ऑफ कोर्स फादर्स डे तो है ही, योगा डे भी है, एंड एज आई मेंशन दैट इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर एज़ वेल। एक और आज एक और ओकेजन है जिसके लिए जून 21 फेमस है, रीसेंट ईयर्स में ही हुआ है, और ये जो है आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे के तौर पर भी मनाया जाता है। एंड राइट हियर इन मिकिनी फनीजा इज़ सेलिब्रेटिंग टुडे बिकॉज़ एवरी मोमेंट हैज़ अ सॉन्ग, लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, एवरी मूड हैज़ अ मेलोडी, और कोई रोमांटिक सॉन्ग हो, कोई हार्ट ब्रेक वाला सीन हो, कोई शादी ब्याह का अवसर हो, या कोई वैसे ही जस्ट कोई एक पार्टी का फेवरेट कोई सॉन्ग हो, तो ये जो है सभी आज इस दिन के लिए ये सारे जॉनरस जो है मनाए जाते हैं। जून 1 से लेके जून 15 तो खैर अब हो ही गई है, ये गूगल फॉर्म्स आपने भर ही दिए होंगे। आज म्यूज़िक वर्ल्ड म्यूज़िक डे है, और फन एशिया जो है हर जॉनरा को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिवस को मनाने के लिए। एक इनफैक्ट देर इज़ अनदर सिमिलर टाइटल्ड डे विच इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल म्यूज़िक डे, दे साउंड सिमिलर, दीज टू डेज वर्ल्ड म्यूज़िक डे एज वेल एज इंटरनेशनल म्यूज़िक डे, दे मे साउंड टू यू दैट दे आर द सेम, बट दे आर टू डिफरेंट, वेरी डिफरेंट डिस्टिंक्ट सेलिब्रेशंस। जो म्यूज़िक डे है वो आज है, और जो इंटरनेशनल म्यूज़िक डे है वो अक्टूबर 1 को मनाया जाता है। तो अब म्यूज़िक की बातें हो रही हैं, एंड अच्छा अच्छा म्यूज़िक हम सुन रहे हैं, लेकिन अब जो जॉनरा, जिस जॉनरा की तरफ अब हम जाएंगे फ्रॉम दिस हैप्पी सेलिब्रेटोरी म्यूज़िक से, अब हम जाएंगे थोड़े से सैड एंड सॉम्बर म्यूज़िक की तरफ। एंड हमारे लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, गाने गाने के बोल थोड़े सैड हैं, लेकिन जो म्यूज़िक है इट्स नॉट, इट्स वेरी गुड। फिल्म जो थी आरजू, उसी का ये सॉन्ग है, लता जी की आवाज़।

हमारे लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की, फिल्म का नाम था आरजू, एंड साधना जी इस फिल्म में और इस गीत में नजर आई. वेल नाउ आई एम गोना हैव टू स्विच गियर्स. आई हैव अ बर्थडे रिक्वेस्ट फॉर मार्टिन. उनको हिंदी तो नहीं समझ में आती, तो आई एम गोना विश हिम इन इंग्लिश. मार्टिन, हैप्पी बर्थडे टू यू. योर मदर इन लॉ जस्ट कॉल्ड एंड शी टोल्ड मी दैट इट्स योर बर्थडे टुडे, June 21st, एंड शी हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर this wonderful song for you. So from here, from all of us at the Fun Asia radio station, hope we are wishing you that, hope your day is filled with lots of love, laughter, and don't forget to eat lots of cake. So happy birthday to Martin. This is the song that your mother-in-law requested for you.

बस आशिकों पे रहे।

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
3: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
2: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
4: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशी को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
8: एब्सोल्युटली, एंड व्हाइल वी आर एट इट, आई शुड रिन्यू सम ऑफ माय ओल्ड ज्वेलरी टू।
7: रिन्यू?
8: या, आई विल एक्सचेंज इट एट तनिष्क फॉर द डिजाइन आई हैव बीन आइंग फॉर अ व्हाइल। दे टेक ओल्ड गोल्ड अबव 9 कैरेट फ्रॉम एनी ज्वेलर फॉर फुल वैल्यू विद जीरो डिडक्शन। Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
7: What better way to celebrate than with something timeless?
8: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: Aaj hi sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
10: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

This show is also brought to you by Dream Home Mortgage, that is led by Hussein Panjwani. His phone number is 972-245-5626, or you can visit their website, which is dreamhomemortgage.com, and they will help you with your dream coming true of owning a house and making it into a home. They specialize with personalized mortgage solutions and smooth stress-free process. They are licensed in all 50 states. Their experienced team is committed to finding the right loan options tailored to your needs accordingly. If you are a first-time home buyer, a buyer again, second or third time, or you are upgrading or you are refinancing, they will help you in all kinds of matters that you have. So start your home ownership journey with them. Dream Home Mortgage, phone number 972-245-5626, or the website, which is dreamhomemortgage.com. अभी जो है मैं सॉन्ग्स जो प्ले करूँगी वो रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स ही हैं सारे और कुछ थोड़े पुरानी फिल्मों के ही हैं. आई गेस दैट इज़ अ जॉनरा दैट आई हैव टू स्टिक टू बिकॉज आप सबकी रिक्वेस्ट आई हुई है, तो मैं ये सॉन्ग्स जो है आपके लिए प्ले कर रही हूँ. यहाँ पर ये फिल्म का नाम आई थिंक चिराग बताया था उन्होंने. लेट्स लिसन टू दिस. आशा पारेख जी गा रही हैं, वेल उन पर फिल्म आया गया है. लता जी की आवाज़ में है.

इतना अच्छा सॉन्ग है, मैंने पहली बार सुना है. आई हैड नो आइडिया. मुझे इस फिल्म के बारे में भी नहीं पता था, और मुझे इस सॉन्ग के बारे में तो ऑब्वियसली, अगर फिल्म के बारे में नहीं पता तो मूवी के बारे में कैसे पता होगा. बट बहुत ही अच्छा क्यूट सा वीडियो आशा पारेख जी पर फिल्म आया गया, एंड शी एक्चुअली इज़ डूइंग ऑल दिस ऑन द स्टेज. और ये जो शो कर रही हैं, जो एक्ट हो रहा है स्टेज पर, उसको सुनील दत्त साहब आई थिंक ऑडियंस में बैठ के देख रहे हैं. एंड अच्छा सा सॉन्ग है. ऑफकोर्स लता जी की आवाज़ है, एंड मदन मोहन जी का म्यूज़िक, मजरू सुल्तानपुरी के लिरिक्स. थैंक यू हमारी लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. दिस इज आरजे एकरूप. आई एम हियर अंटिल 10 o'clock. 7 बजे से 10 बजे तक ये शो संडे गपशप, इसमें होती हैं आपके साथ बातें ऑफ एयर एंड ऑन एयर भी. कभी कभी अगर आप आना चाहते हैं ऑन एयर, देर इज समथिंग इंटरेस्टिंग यू वॉन्ट से, देर आर सम विशेज दैट यू वॉन्ट रीले, तो मैं आपके जो है फ़ोन कॉल्स ऑन एयर भी ले सकती हूँ. इफ़ देर इज़ एनी मैसेज दैट यू वॉन्ट टू गिव टू समवन ऑन एयर ऑफ एयर, डू लेट मी नो. 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. आज फादर्स डे है, इंटरनेशनल योगा डे है, लॉन्गेस्ट डे है साल का, और म्यूज़िक डे है. कितनी सारी चीज़ें हैं, एंड आई होप कि आप आज जो है आपका दिन बहुत अच्छा हो, आप इस डे को बहुत अच्छा यूज़ करें. टुडे इज़ द मोमेंट, यू सीज़ द अपॉर्चुनिटी वट एवर इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, एंड मेक द बेस्ट ऑफ टुडे. सो ये जो है अगला सॉन्ग, अब ये भी रिक्वेस्टेड सॉन्ग है, अच्छा सॉन्ग है ये वाला भी. फिल्म का नाम है आराधना.

इस फिल्म का स्टारडम देखिए, इस स्टार्स इन स्टार्स की स्टारडम सोचिए कितनी बढ़ गई थी. एंड दिस वाज द फर्स्ट फिल्म दैट लेड टू द नेक्स्ट 15 कंसेक्यूटिव सुपरहिट फिल्म्स फॉर काका जी, यानी कि राजेश खन्ना साहब के करियर में. इस फिल्म के बाद तो जैसे चार चांद ही लग गए. ही बिकेम द सुपर स्टार ऑफ इंडिया. बहुत सारे पूरे इनफैक्ट पूरे नेशन में ही इनको बहुत प्यार मिला. एंड ये जो फिल्म है सोवियत यूनियन में भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई. एंड इवन इन इंडिया दिस फिल्म वाज सो सक्सेसफुल इन द साउथ, जहाँ पर हिंदी जो है फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती. एंड इवन जो नॉन हिंदी स्पीकिंग जो रीजन्स हैं इंडिया के बाकी और भी, वहाँ पर ये सक्सेसफुली कंसेक्यूटिवली 100 डेज तक ये फिल्म चली. तो सोचिए कितना स्टारडम, कितना प्यार और कितना कितने लोगों को इस फिल्म ने टच किया. एस डी बर्मन साहब का म्यूज़िक रहा और जो इस मूवी का सॉन्ग है रूप तेरा मस्ताना, वो तो कहा जाता है कि वो सिंगल टेक में ही पूरा पूरा सॉन्ग शूट हुआ, बिकॉज जो है टाइम क्रंच था एंड अदर देर वर अदर कमिटमेंट्स दैट हैड टू बी डन. सो देर वॉज जस्ट सो लिमिटेड टाइम फॉर दैट सर्टन सॉन्ग फॉर इन दिस फिल्म. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज शॉट इन वेरी स्पॉन्टेनियसली, वेरी इन जस्ट वन टेक विदाउट एडिटिंग. सो ये सारी अच्छी चीज़ें इस फिल्म की, जिसका नाम आराधना. एंड वॉट अ सुपर हिट फिल्म इट वॉज. शक्ति सामंता की फिल्म, एस डी सर बर्मन साहब का म्यूजिक. थैंक यू हमारे लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की. अब एक और अगला सॉन्ग है, इसमें तो क्या प्रेज हो रही है लेडी की, तो चलिए सुनते हैं. फिल्म का नाम धर्मात्मा.

पर्सनल इंजरी अटॉर्नी अगर आप ढूंढ रहे हैं और इफ़ यू वांट टू रेफर समबडी टू पर्सनल इंजरी लॉयर देन लुक नो फर्दर देन अटॉर्नी ओमर ख्वाजा. ही विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. डीलिंग विद द इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी अ हैसो एंड वेरी स्ट्रेसफुल प्रोसेस. सो ही विल मेक दैट प्रोसेस very hassle free for you, and he will make sure that you get the compensation and that you're compensated for what you deserve. You don't have to pay until you win. For a free consultation with Omar Khwaja, you can call this number 469-300-5046, or you can visit his website, which is attorneyomar.com. ye jo hai Omar Khwaja, personal injury lawyer community mein. हमारी लिसनर ऑन द सेम लाइन्स राजेश खन्ना जी, उन्होंने इस सॉन्ग की फरमाइश की एंड व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग दिस इज एज वेल.

आप इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट दे रहे हैं एंड आई एम एन्जॉयिंग दोज सॉन्ग्स थरली. थैंक यू सो मच. जस्ट कीप द कॉल्स कमिंग इन. 972-235-5555. दिस इज 104.9 FM फनीशा रेडियो और मैं आपकी आरजे एक रूप यहाँ पर स्टूडियो में 10 o'clock तक. सो अब ये जो सॉन्ग है ये हमें ब्रेक की तरफ लेकर जाएगा. ब्रेक के बाद रिज्यूम करेंगे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स एंड अच्छी अच्छी बातें. And then I also have a giveaway after 9.

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

It is because of their love, patience, and wisdom that we are what we are today. Their qualities have shaped us so well. They are our curators, and we become of what they think of us. And we are always so grateful to our fathers. Thank you for being our anchors, guide, and the biggest inspiration. Happy Father's Day to everybody that is celebrating today, June 21st, Father's Day. बागवान का ये टाइटल ट्रैक जो कि आई थिंक बहुत ही अप्रोप्रिएट सॉन्ग है फादर्स डे के लिए एंड इवन मदर्स डे, बिकॉज़ वो तो दोनों माँ बाप के बारे में ही बात करते हैं. बट आई थिंक बागवान जो एक जो कैरेक्टर है, जो एक हमारे दिल में, हमारे मन में जो एक छवि बनी हुई है बागवान की, वो कहीं ना कहीं हमें एक मेल फिगर की याद दिलवाते हैं. तो जब भी फादर्स डे होता है, मैं ये डेफिनेटली ये वाला टाइटल ट्रैक तो ज़रूर प्ले करती हूँ और डेडिकेट करती हूँ उन सारे पिताओं के लिए, पिताजी के लिए, जिनका बहुत बड़ा हाथ होता है उनके बच्चों के जीवन में. एंड वी आर ऑलवेज सो ग्रेटफुल टू देम. विशिंग एवरीबडी अ वेरी वंडरफुल डे, अ वेरी लवली डे, एंड प्लीज़ मेक द डे वेरी स्पेशल फॉर द फादर इन योर लाइफ, द फादर फिगर इन योर लाइफ. और साथ ही साथ योगा करना भी मत भूलें, बिकॉज आज योगा डे है. तो फिर अपने आप को स्ट्रेच करें, एक्सपैंड करें जिस भी डायरेक्शन में आप कर सकते हैं. ऑफ कोर्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर देयर, मेडिटेशन, सो डेफिनेटली डू दैट फॉर योर इनर हीलिंग. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड आज हमारे एक श्रोता हैं, वो श्रोता तो नहीं, मैं हाँ श्रोता कह सकती हूँ, उनके सन इन लॉ का बर्थडे है, तो उनको भी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन मार्टिन. आई होप दैट यू आर स्टिल ट्यून्ड इन एंड एन्जॉइंग द Hindi Bollywood songs. It is your birthday, so wishing you a very good day. तो चलिए अब मैं एक सॉन्ग प्ले करती हूँ जस्ट फादर्स डे के ओकेजन पर, एंड देन उसके बाद मैं आपसे गिव अवे पूछूंगी. तो चलिए जस्ट स्टे ट्यून्ड इन देयर. ये सॉन्ग प्ले करने के बाद मैं गिव अवे का क्वेश्चन पूछूंगी. दिस सॉन्ग हैज़ नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन, बट आई जस्ट स्टिल वॉन्ट यू टू एन्जॉय दिस सॉन्ग. हैप्पी फादर्स डे.

अभी अभी बस मेरे एक और आरजे हैं यहाँ पर, कॉलीग हैं, वो अभी विश करके गए हैं फादर्स डे, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई. जस्ट सून एज आई टर्न्ड ऑन द माइक वो एकदम से आ गए. सो अनंत, हैप्पी फादर्स डे टू यू एज वेल, एंड टू ऑल्सो ऑल द लिसनर्स ऑफ आर रेडियो स्टेशन 104.9 FM फैन एशिया रेडियो. दिस इज आरजे एक रूप. अच्छा, सॉन्ग हम सुन रहे थे अकेले हम अकेले तुम का, जिसमें आमिर खान एंड मनीषा कोयराला, और बड़ी हार्ट वार्मिंग फिल्म, अच्छी फिल्म बनी थी. इसमें तानवी आज़मी भी थी और बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट एंड एक्टर्स थे. तो चलिए अब यहाँ से हम बढ़ते हैं हमारे गिव अवे की तरफ. फ़ोन नंबर मैं आपको पहले याद करवा दूँ, 9722355555. और गिव अवे जो है वो आपको मिलेगा फन पिज़्ज़ा किचन की तरफ से. सो इसमें आप हाँ क्या जीत सकते हैं, $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज़्ज़ा किचन. और फन पिज़्ज़ा किचन के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा स्टोर है, फन एशिया के ओनर्स का ही है. दिस इज़ ओन्ड बाय देम एंड दिस इज़ अ ग्रेट टेस्टिंग चीज़ी फ्लेवर्ड पिज़्ज़ा विद सम देसी ट्विस्ट. और इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, फॉर एग्जांपल अचारी पनीर पिज़्ज़ा विच इज़ पैक्ड विद दैट टेंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन द स्पाइसी मैजिक. और अगर आप मीट लवर हैं तो डेफिनेटली तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा है आपके लिए. परफेक्ट स्मोकी जो फ्लेवर है वो देंगे आपको स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बड्स. जी हाँ, तंदूर में बनते हैं इनके पिज़्ज़ाज एंड बड़ा अच्छा ट्रेडिशनल टिपिकल ट्विस्ट हो जाता है, देसी ट्विस्ट मिलता है इनके पिज़्ज़ाज को. सो द फन फन पिज़्ज़ा किचन, यू दिस इज़ अ चांस फॉर यू टू विन अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम दैम. द ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज़ दैट इफ़ यू हैव वन दिस गिव अवे इन द last 1 month, please refrain from calling at the very beginning. आप बाद में कॉल जरूर कर सकते हैं टू गिव मी द राइट आंसर. यू आर वेलकम टू कॉल एनी टाइम ऑन एयर यू वॉन्ट टॉक अबाउट एनी थिंग. लेकिन अगर आप ये फिर से गिव अवे क्लेम करना चाहते हैं तो देन आई गेस जस्ट गिव इट 1 month मोर, बिकॉज वी वांट टू गिव एवरीबडी एन इक्वल चांस. सो हियर इज़ योर चांस टू विन अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज़्ज़ा किचन. और क्वेश्चन मेरा क्या है आज आपसे, हिंदी मूवीज़ के बारे में ही बात करेंगे. वी ऑलवेज टॉक अबाउट the front of the camera that we see on screen. Today I have a question related to the person that is behind the camera, the director on whose creativity the whole film is made. जो भी फिल्मों में हम देखते हैं वो एक director की ही creativity होती है, उनकी innovation है, और वो किस तरह से किस एक्टर से क्या करवाते हैं, अच्छा काम होता है नहीं अच्छा काम होता, कोई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं कोई चीज़ें ठीक ठाक होती हैं. जो भी है डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है एंड इन फैक्ट डायरेक्टर इज़ लाइक द फादर ऑफ दैट फिल्म. तो आज मेरा अभी के लिए इस गिव अवे के लिए क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको मुझे बताना है कि मेन स्ट्रीम जो बॉलीवुड कमर्शियल सिनेमा की जो फिल्में हैं, अगेन कमर्शियल सिनेमा की मैं बात कर रही हूँ, मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की या मल्टी लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रही, रीजनल सिनेमा की बात नहीं कर रही, द मेन बॉलीवुड कमर्शियल सिनेमा, उसमें आपने मुझे उस डायरेक्टर का नाम बताना है जिन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई हैं. एंड इफ़ यू नो द नंबर दैट वुड बी ग्रेट, बट प्लीज़ ट्राई टू नॉट लुक दिस अप ऑन गूगल और ऑनलाइन. अगर आप गेस करेंगे एंड द क्लोजेस्ट वन, वो इट्स गुड, एटलीस्ट आपने गेस किया विदाउट लुकिंग फॉर द आंसर एंड देन जस्ट गिविंग इट टू मी राइट अवे. प्लीज़ ट्राई, लेट मी नो who is the director in the Bollywood commercial cinema that has made the most number of films, and if you know that number, more than welcome to share it with us. आपका अगर सही जवाब होगा तो आपको मिलेगा फन पिज़्ज़ा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड.

0: Again, I'll just repeat my question. The question is, you have to tell me the name of the director in the Bollywood commercial cinema jinhone sabse zyada number of films banayi hain, and what is that number? So that would be great if you can tell me both. 972-235-5555 is the number to the studio. This is for winning a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. Let me see. Let's take this caller on air. Good morning. You're live on air and aap giveaway ke liye call kar rahe hain.
1: Hi, good morning.
0: Good morning. Are you calling for the giveaway?
1: I'm just calling to request a song for the Father's Day.
0: Okay. Chaliye. Now that you're on air, tell us kaun sa song sunenge.
1: Yeah, it's a song actually from Vicky D. Parikh. An album is Dad, A Daughter's First Love. Papa ko paya to Rab ko paya hai.
0: First Love, is that's the name of the song?
1: Dad. The album is Dad, A Daughter's First Love.
0: Okay, and then gaane ka naam kya hai?
1: It's Papa Ko Paya To Rab Ko Paya Hai.
0: Oh.
1: It's like from Vicky D. Parikh.
0: Papa Ko Paya,
1: to Rab Ko Paya Hai.
0: Chaliye, alright, that's something very new. Alright, I will play that. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Bye-bye. Good morning, you're live on air. Aap giveaway ke liye call kar rahe hain?
2: Yes, madam. Yes.
0: All right, so you're live on air. Aap apna naam bataiye and then...
2: Mera naam Saurabh hai.
0: Saurabh.
2: Aur most Bollywood... Haan.
0: Okay, haan ji. Answer bataiye.
2: Most Bollywood film banayi hai David Dhawan ne.
0: Arre wah.
2: Jo ki Varun Dhawan ke father hai. Varun Dhawan ke father hai jo.
0: Haan ji, yes.
2: और
0: आपको पता है कि उन्होंने कितनी फिल्में बनाई हैं?
2: नहीं, काउंट तो याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 30 प्लस है.
0: 30 प्लस तो 31 भी होता है, 32 भी होता है. इट इज 30 प्लस, बट चलिए, लेट मी वेट एंड हियर फ्रॉम अदर लिसनर्स टू. सौरभ, आप जस्ट स्टे अराउंड द फोन एंड आई विल अनाउंस. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एयर. थैंक यू वेरी मच. सो सौरभ जी ने हमें पूरा जवाब तो नहीं दिया. उन्होंने डायरेक्टर का नाम बता दिया, विच आई विल नॉट रिपीट. इफ यू मिस्ड हियरिंग द नेम द डायरेक्टर, आई एम नॉट गोना रिपीट. क्वेश्चन मैं ज़रूर रिपीट करूँगी. बॉलीवुड कमर्शियल सिनेमा में सबसे ज़्यादा फिल्में किन्होंने बनाई हैं, और अगर आप बता सकते हैं कि कितनी बनाई हैं, दैट वुड बी ग्रेट. आप जीत सकते हैं $10 फन पिज़्ज़ा किचन की तरफ से गिफ्ट कार्ड. सो इट इज़ अ टू पीस टू पार्ट क्वेश्चन. द नेम ऑफ द डायरेक्टर दैट हैज़ मेड द मोस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन बॉलीवुड कमर्शियल सिनेमा, और कितनी फिल्में बनाई हैं उन्होंने.

0: Chalie Sunte, there's another caller with us. Good morning, you're live on air.
1: Good morning.
0: Yes, are you calling?
1: You know the movie you asked about?
0: Hanji.
1: Yeah, I'm calling about that. So David Dhawan is the director.
0: Hanji.
1: Father Varun Dhawan, and total, I think he made around close to 45 movies.
0: Ah, close to 45. That's very, very close. Ji haan. What is your name? Aapne naam hi nahi bataya hume apna.
1: Mani.
0: Mani. Kaun sa? English M-O-N-E-Y wala? Jis mein bahut sara money aata hai. Wo wala ya dusra wala?
1: M-A-N-I.
0: Achha,
1: M-A-N-I.
0: Us wo kuch, wo kya hota hai? Wo wala money bhi maine suna hai. Uska kya meaning hota hai?
1: Mujhe apne naam ka maloom hai, lekin...
0: Oh. अच्छा
1: दूसरा वाला जो एम ओ एन ई वाई वो तो मालूम है सबको
0: वो तो सबको मालूम है और सबको बड़ा प्यारा भी है
1: आई नो
0: ठीक है चलिए थैंक यू सो मच यू आपने 45 बोला ना आप अपने फोन के पास रहिए ठीक है आई एम गेटिंग अनदर कॉल अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर कोई और नहीं बताता तो देन आई विल डिक्लेयर यू एज द विनर ठीक है मनी
1: ओके श्योर
0: जी गुड मॉर्निंग योर लाइफ ऑन एयर एंड आर यू कॉलिंग फॉर द गिवअवे
2: Yes.
0: All right. So let's hear from. पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए.
2: Zemron.
0: You gotta say that again. I couldn't understand.
2: Zemron.
0: Zemron. Yeah, Zemron.
2: Zemron.
0: Okay.
2: With a Z.
0: Zemron. Okay. All right.
2: Yes.
0: So give us the right answer, and then you may be the winner for today's giveaway. Who is the direct? What's the name? The director.
2: David Dhawan.
0: Okay, and with how many films?
2: 46.
0: Oh, आपने तो एक extra और बता दी. All right, that is very close. Thank you for your call.
2: Thank you.
0: I really appreciate it. जी. So actually, the answer अब मैं I guess थोड़ी देर और wait करते हैं. अगर कोई नहीं कॉल करके बताएंगे तो फिर मैं हम लोग मनी जी को विल डिक्लेयर हिम एज द विनर आई एम गोना वेट फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स इट इज डेफिनेटली डेविड धवन

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: Ye tera ghar, ye mera ghar.
3: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
4: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
3: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
5: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
6: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
7: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
6: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: भूख लगी, जोरों की भूख लगी।
13: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
14: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
15: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
17: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: Ab to karna hi padega, madam.
18: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: With your

0: ऑलराइट, ये हम सॉन्ग सुन रहे थे हमारी लिसनर जिन्होंने ऑन एयर आके इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की. तो ड्यूरिंग द ब्रेक, वेल, जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि कमर्शियल सिनेमा, बॉलीवुड कमर्शियल सिनेमा के वो कौन से डायरेक्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्मों को का निर्देशन किया है, द डायरेक्टर दैट हैज़ मेड द मोस्ट नंबर ऑफ हिंदी फिल्म्स इन द बॉलीवुड वेरी कमर्शियल सिनेमा. और जब कमर्शियल की बात होती है तो फिर वही मिर्च मसाला होता है, मेन स्ट्रीम के एक्टर्स होते हैं और कई बार तो बड़ी चीज़ी स्टोरी होती है. मैस अपील जो स्टोरीज़ होती हैं उनके लिए, जो मैसेस के लिए बनाया जाता है, और फिर उसमें कुछ रियलिटी तो ऑफकोर्स होती है बट कुछ ना कुछ अनरियल चीज़ें भी होती हैं, एंड दे आर शोड टू अस एंड डायरेक्टेड इन अ वे वेयर दोज थिंग्स लुक सो रियल. सो दोज आर द थिंग्स इन माई माइंड दैट डिफाइन द इंडियन द बॉलीवुड कमर्शल मिर्च मसाला सिनेमा. सो उस सिनेमा से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा था कि डायरेक्टर जिन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई हैं. Everybody gave me the right answer for the name, which was David Dhawan. जी हाँ, आजकल के जो बहुत ही sensation बने हुए हैं, heartthrob भी कह सकते हैं उनको, वरुण धवन उनके father David Dhawan, जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम I think गोविंदा के साथ किया है और बहुत सारी अच्छी फिल्मों को उन्होंने direct किया है. And like I said, mass appeal वाली फिल्में थी, at least in the 90s जो इनकी फिल्में आती थी, number one वाली जो सीरीज चली थी. और हमारे कुछ श्रोताओं ने, कॉलर्स ने कहा, एक ने तो बोला 45, एंड आई थॉट दैट दैट वाज द राइट आंसर, बट देन ड्यूरिंग द ब्रेक एज आई रेड मोर अबाउट इट, तो जो भी फिल्म आई थी है जवानी तो इश्क होना है, एक्चुअली दैट वाज द 46th फिल्म दैट वाज डायरेक्टेड बाय डेविड धवन. तो जो ठीक आंसर है, जो राइट आंसर है, वो है 46. एंड मनी, आई थॉट दैट यू वुड बी द विनर बिकॉज आई हैड अनाउंस कि अगर मुझे कोई और आंसर नहीं देगा तो देन आई वुड clear you as the winner. However, Zamran, you were the first caller that told me that 46 is the right answer. So yes, David Dhawan has directed 46 films, and Hai Jawani To Ishq Hona Hai, the recent film that came out, is David Dhawan's 46th फिल्म. सो उनका जो करियर है इतना लंबा, इतना ग्लोरियस, इतना इस्टेब्लिश करियर उनका, एंड ही जस्ट फिनिश्ड मेकिंग डायरेक्टिंग हिज 46th फिल्म कॉल्ड है जवानी तो इश्क होना है. एंड जामरान, आई थिंक इफ आई हर्ड योर नेम करेक्ट, गिव मी अ कॉल बैक. यू आर द विनर फॉर $10 gift card from a Fun Pizza Kitchen, because you were the first one telling me the answer, which is 46 films. So I hope that you're still there. Do give me a call back, 972-235-5555. Acha, Father Day ki baat ho rahi hai, to ek bade popular actor rahe hain jinhone zabardast kaam kiya hai industry mein, and फादर फिगर जो वो बाऊजी का रोल उन्होंने किया था इतनी आइकॉनिक DDLJ में, वो एक छोटा सा डायलॉग है, जा सिमरन जीले अपनी जिंदगी, तो वो मुझे एकदम से याद आया. आई हैव पुट दैट अप, इट इज़ अ 28-second क्लिप, तो जरूर सुने आप, एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू बैक ऑल द वंडरफुल मेमोरीज रिलेटेड टू DDLJ एंड वेरी स्पेशली बाऊजी ऑफ DDLJ. एंड हैप्पी फादर्स डे.
1: इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता. जा बेटा जा, अपने राज के पास जा, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
0: जा बेटा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, ये इतना इनग्रेंड है ना ये डायलॉग हम सबके मन में आफ्टर दैट फिल्म. चलिए अब डेविड धवन पर वापस आते हैं, उन्हीं की एक फिल्म का सॉन्ग सुनते हैं. एंड व्हाइल आई वेट फॉर जामरान कॉल, जामरान यू आर द विनर फॉर $10 गिफ्ट कार्ड, सो डू गिव मी अ कॉल बैक, 972-235-5555. एंड दिस इज डेविड धवन फॉर अस. ये गाना कहाँ से आ गया, नशे दियाँ पुड़ियाँ, कहाँ चल रहा है ये. ओके, ऑलराइट, सो वो DDLJ का सॉन्ग प्ले हो गया था, बट हियर यू गो.

बॉलीवुड कमर्शियल सिनेमा की ये एक आइकॉनिक कलेबोरेशन, आइकॉनिक जोड़ी गोविंदा एंड डेविड धवन, जिन्होंने मिलकर 18 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. एंड एज आई वाज मेंशनिंग पैरेलल सिनेमा, वो नॉट पैरेलल्स, कमर्शियल सिनेमा जिसके कुछ डिफरेंट अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड डेफिनेटली स्लैपस्टिक कॉमेडी इज़ वन ऑफ देम. और ये जो है माहिर थे ये दोनों ऐसा काम जो बहुत ही कॉमेडी जो कि नहीं हंसी भी नहीं आती लेकिन ख़राब भी नहीं होती तो भी हमें हंसी आ जाती. सो एनी वे वॉज अ मिक्स ऑफ बोथ. तो ये बहुत सारी ऐसी फिल्में दी इन्होंने 90s के दशक में, 90s के दौर में 18 ब्लॉकबस्टर फिल्म्स इस जोड़ी ने हमें दिए, यानी कि डेविड धवन एंड गोविंदा. सो सोचिए, आउट ऑफ द 46 फिल्म्स दैट डेविड धवन साहब डायरेक्टेड सो फार, उनमें से 18 जो हैं गोविंदा जी के साथ में. सो कितनी इनकी गहरी दोस्ती, क्या केमिस्ट्री होगी इन दोनों कलाकारों की, एंड इम्पेकेबल कॉमिक टाइमिंग गोविंदा, एंड ऑफ कोर्स हिज डांसिंग स्किल्स, हिज कॉमेडी ऑफ कोर्स, वेरी इम्प्रोविजेशनल स्किल्स, एंड दे आर जस्ट अ वंडरफुल कलेबोरेशंस. हीरो नंबर वन, और इसमें करिश्मा कपूर भी इनके साथ काफ़ी सारी फिल्मों में नज़र आई थी. आँखें, राजा बाबू, कूली नंबर वन, हीरो नंबर वन, हसीना मान जाएगी, इन सभी में करिश्मा कपूर इनके साथ नज़र आई थी. So yes, David Dhawan is the director that has made the most number of commercial cinema films in the industry, and he has made such a strong mark for himself in the industry. अब फादर्स डे है क्योंकि आज, तो एक ये वाला सॉन्ग तो डेफिनेटली बनता है. ये जोड़ी शाहरुख खान एंड अनुपम खेर, जो कि बहुत सारी फिल्मों में हमने इनको इकट्ठे देखा, एंड इन दिस वन लाइक DDLJ फादर एंड सन का कॉम्बिनेशन था, और ये वाला सॉन्ग आप सबके लिए.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम पर. मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत. वेल, जस्ट चिल में हम करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. A big shout out to Ekroop for a fab show she brought to us today morning till 10 a.m. And yes, आज बहुत से दिन जो हैं वो celebrate हो रहे हैं. So पहले तो a very very happy World Music Day. जी हाँ, may your life always be filled with beautiful melodies, joyful rhythms and unforgettable songs. और जैसा कि हमने कहा था कि Fun Asia जो है World Music Day celebrate करेगा आपके साथ, और 21 जून यानी कि आज के दिन हर शो में एक थीम होगा. तो हमारे इस सेगमेंट का यानी कि 10 से 10:30 के सेगमेंट का थीम है ट्रैवल. वेल, इट्स रिलेटेड टू माय शो, राइट? क्योंकि सैटरडे जस्ट चिल में मैं लेकर आती हूँ एक ट्रैवल सेगमेंट जहाँ पर हम कुछ मज़ेदार कोई एक डेस्टिनेशन की बातें करते हैं. तो इट साउंड्स गुड एंड ग्रेट दैट आई गेट द थीम ऑफ ट्रैवल. तो 10 से 10:30 हम सुनेंगे वो गाने जो कुछ ट्रैवल से रिलेटेड हों. सो स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555. I'll be with you till noon today.

That was taken from the movie Swadesh. यूं ही चला चल राही, एंड यूं ही चलते चलते राही कभी कभी हो जाता है, गलती से मिस्टेक हो जाती है, किसी और की गलती से भी हो जाती है, अब कभी कभी अपनी गलती से भी हो जाती है, दैट यू डू गेट इन्वॉल्व इन अ कार या फिर कोई ट्रक एक्सीडेंट या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट. तो आप अटर्नी ओमर ख्वाजा को रखें याद, क्योंकि ना केवल ये आपका केस लड़ेंगे, आपको कॉम्पनसेशन भी दिलवाएंगे, साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी के स्ट्रेस से भी डील करेंगे, एंड आप इन्हें पे नहीं करती जब तक आप जीत नहीं जाते अपना केस. सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप कॉल करें 4693005046 और यू कैन विजिट attorneyomar.com. वेल टुडे वी आर इन दिस सेगमेंट सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे, राइट? सो टर्न अप द वॉल्यूम एंड सेलिब्रेट द मैजिक दैट कनेक्ट्स पीपल अक्रॉस कल्चर्स. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे. एंड टुडे दिस सेगमेंट, you know, so I have been given the category of travel. और जब भी मैं travel करती हूँ ये गाना मेरी playlist में होता ही होता है.

दरअसल अगर आप सोच रहे हैं अपने ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज को गुड बाय कहने का, देन हियर्स योर चांस टू नो समथिंग मोर, राइट? लेसिक इज जस्ट वन ऑफ सेवरल विजन करेक्शन ऑप्शंस जो कि आज आपके लिए अवेलेबल है. डॉक्टर शहजाद बाटलीवाला, फेलोशिप ट्रेन्ड आई सर्जन एंड फाउंडर ऑफ विजनरी आई केयर इन प्लेनो, इनकी अप्रोच बड़ी सिंपल सी है. You know, he believes ki educate first so that you know what's the best decision for your eyes with confidence. So, aapko sab baatein detail mein batai jayengi so that you can make the right decision for your eyes and to learn about your options and see if you are a candidate. Aap call kare 214-972-2020 or visit lasikplano.com. Saath hi saath, if you mention Funasia 2020, you receive a free consultation. So, visionary eye, helping you see your future more clearly. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

0: The Texas Super Kings are here, and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
3: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
4: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
5: इन प्लेनो।
4: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: छोटा सा मेरो मदन गोपाल।
7: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha from June 28th through July 4th, 2026. Experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: पापा, फादर्स डे पे क्या गिफ्ट चाहिए?
11: बेटा है तू मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है।
12: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। All that your father needs is good food, great company, and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining, and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
13: Is sheher ko hua kya? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
14: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com। कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, इर्विंग और गार्लिन में उपलब्ध।
15: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
18: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

सुन रहे हैं आप 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. This is Madhulika, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ करते हैं हम, as the name suggests, Just Chill. Well, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. Well, wishing, you know, a very happy Father's Day to all the incredible dads, grandfathers and father figures out there. Thank you for your endless love, guidance, sacrifices and support. Today, we celebrate the heroes who make our lives brighter every day, right? So, आपको बताऊं कि एक giveaway आया है आपके लिए. It's a $50 gift card from Omar Khwaja. और आपको करना ये है कि होता है ना कि हर एक के फादर उनके लिए सुपर हीरो होते हैं. मेरे फादर मेरे लिए सुपर हीरो थे एंड हैं और हमेशा रहेंगे. सिमिलरली सबके लिए उनके जो डैड्स होते हैं, दे आर देयर सुपर हीरोज. तो आपको मुझे कोई एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करना है और बताना है दैट व्हाई यू बिलीव दैट योर डैड इज़ अ सुपर हीरो. एंड जिसकी भी बात जो है सबसे कुछ हटके मज़ेदार अच्छी सी होगी, that person will win a $50 gift card from Omar Khwaja. So the studio number is 972-235-5555. A very happy Father's Day to all our wonderful listeners, to every father who works hard, dreams big for his family and stands as a pillar of strength. Well, today is your day. So may you be surrounded by love, laughter and appreciation. Don't forget, give me a call, 972-235-5555, and win a $50 gift card from Omar Khwaja once you share your story of a real life incident, why your dad is your superhero. And the first song that comes to my mind whenever I think of my dad is Papa Kehte Hain.

0: छोरों को पीटना है कि इतनी बड़ी सजा? आज तक पूरे विश्व में किसी को ना मिली होगी।
1: काली तो उसने मन दी थी ना, तन्ने आदरवाणी की जरूरत थी है?
0: अब बता रही है।

0: जो भी कहेगी सब कराएंगे मम्मी।
1: बस इस पहलवानी से बचा ले।
2: साल भर के लिए भूल जो कि थारी कोई माँ है।
3: रे इतनी जल्दी भूलगी?
4: जो के बात कर रहा है माँ अभी छोरियाँ और अखाड़े में इस उम्र में पाप करवावेगा के

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
4: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
3: Renew?
4: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
3: What better way to celebrate than with something timeless?
4: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
6: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
7: Tarikh par tarikh.
0: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
6: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं।
9: बुककीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं।
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं।
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
0: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG FinTax. Your growth, our strategy. AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
10: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutton. Rich, bold, no compromises.
0: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGPT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
16: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
17: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
16: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
0: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
18: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
19: Tracks that put you on the right track.

दिस इज मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर 9722355555। एंड यस अर्शन, इफ यू आर स्टिल

ऑलराइट दैट वाज अ रंगी साड़ी एंड अब आ गया है आपके लिए एक गिव अवे. जी हाँ, हियर इज अ चांस टू विन द कढ़ाई पनीर और कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. साथ ही साथ आप मंडे टू फ्राइडे एंजॉय कर सकते हैं स्पेशल थाली जो एक्साइटिंग न्यू डिशेस के साथ रोटेट होती है डेली फॉर लंच ओनली. चंडीगढ़ बाइट्स इज लोकेटेड ऑफ मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन. यू कैन ऑफकोर्स विजिट चंडीगढ़ फॉर मोर डिटेल्स. और क्योंकि फादर्स डे है तो जो गिव अवे का सवाल है वो भी फादर्स डे से ही रिलेटेड है. तो आप मुझे कॉल करके बताएंगे कोई भी दो ऐसे गाने, वेल प्रेफरेबली बॉलीवुड के या हिंदी पॉप एल्बम के या कोक स्टूडियो के, विच एक्सप्रेस योर फीलिंग फॉर योर डैड या व्हाट डैड मीन्स फॉर यू. सो कोई भी ऐसे दो गाने बताएं जो कि एक्सप्रेस करते हों कि व्हाट योर डैड रियली मीन्स फॉर यू. द स्टूडियो नंबर 9722355555.

Well, that was a गहरा हुआ taken from the movie धुरंधर. अच्छा भाई डैलस आप लोग तैयार हो जाएं बिकॉज विशाल एंड शेखर अपना सुपर हिट टूर लेकर आ रहे हैं डैलस ऑन संडे जुलाई 12th एट द कर्टिस कर्वल सेंटर इन गार्लैंड. टिकट्स आर ऑन सेल नाउ एट cashpatelproductions.com. सो गो अहेड एंड बाय दोज टिकट्स बिफोर दे गेट ऑल सोल्ड आउट राइट. सो दैट्स cashpatelproductions.com. Vishal and Shekhar live. The Super Hit Tour is going to be in Dallas on Sunday, July 12th at the Curtis Culver Center in Garland.

आज जैसे हम वर्ल्ड म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट, 21 जून. तो आपको बताऊं कि ये जो वर्ल्ड म्यूजिक डे है ना, इट बिगैन इन 1982 इन फ्रांस एंड वॉज स्टार्टेड बाय द फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. इसको फेथ दला म्यूजिक भी बोला जाता है. दैट्स बेसिकली फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक. एंड द आइडिया था इस दिन के पीछे वो ये था दैट म्यूजिक शुड बी फ्री एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन. म्यूजिशियंस जो हैं ऑफन परफॉर्म इन पार्क्स, इन स्ट्रीट्स, इन ट्रेन स्टेशंस एंड पब्लिक स्क्वेयर फॉर फ्री. म्यूजिक कहते हैं ना, इज़ वन ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट कैन एक्टिवेट ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एट द सेम टाइम. स्टडीज हुई हैं एंड दे शो दैट लिसनिंग टू म्यूजिक कैन रिड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूव मेमोरी एंड इवन बूस्ट एक्सरसाइज परफॉर्मेंसेज. हर कल्चर में इन दिस वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन म्यूजिकल ट्रेडिशंस, यू नो, मेकिंग म्यूजिक अ ट्रूली universal language. So wishing you all a very happy World Music Day.

लेकिन फ्रॉम द मूवी लगे रहो मुन्ना भाई, दैट वॉज अ पल पल पल. वेल, इट्स ऑलवेज ऑलवेज फन टॉकिंग टू यू ऑल एंड प्लेइंग सम मेलोडियस सॉन्ग्स अलॉन्ग द वे. इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय, बट आप कहीं जाइएगा नहीं. टू स्टे ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, एज यहाँ हमारे शोज आपको एंटरटेन करते रहेंगे. कमिंग अप नेक्स्ट इज नीलम. मैं मिलूंगी आपको सैटरडे संडे जस्ट चिल में, जहाँ करेंगे हम, एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल. बल तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: The Texas Super Kings are here, and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
5: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu? Dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. Zindagi ke raaste dhundle ho gaye hoon. तो वक्त है सही दिशा का।
6: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
7: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
8: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस एंड रिसर्च में वेरी।
9: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
11: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में? सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.

दिस इज KGMB 104.9 FM फन एशियल डू पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जी दोस्तों, एक से दो के बीच में आपका और हमारा जो साथ होता है अमूमन हम आपके लिए गैर फिल्मी गाने लाते हैं और कुछ मिली जुली बातें होती है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की, वेब सीरीज की, ड्रामाज, टीवी सीरीज वगैरह वगैरह। लेकिन आज भी हर बिल्कुल वही बातें करेंगे, गैर फिल्मी गाने ही होंगे। लेकिन जो सेगमेंट है अप अंटिल 1:30 वो एक खास सेगमेंट है एंड दैट इज अबाउट द वेडिंग सॉन्ग्स। जी हाँ, क्योंकि भाई आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे और हमारे फनेशा रेडियो ने जो कंडक्ट की थी ये कंपटीशन आप सभी के लिए, नॉट द कंपटीशन, आई शुडंट से दैट, लेकिन हमने आपके लिए पूछी थी आपकी राय कि हर एक कैटेगरी में आपके कौन से पसंदीदा गाने हैं। तो हमारे हिस्से आए हैं वेडिंग सॉन्ग्स। हमारे सब आरजेस को आप सुनेंगे आज अलग अलग कैटेगरीज के गानों के साथ। और जब मुझे बोला गया था कि आप कुछ वेडिंग सॉन्ग्स लगा देगी, तब मैंने सोचा कि मैं फिल्मी गाने तो लगाती नहीं हूँ, अब क्या करूँगी वेडिंग सॉन्ग्स के लिए मुझे बोला गया है। तो वेल, फिल्मी सॉन्ग्स के अलावा भी वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं ना, तो ये मुझे आया ख्याल मेरे जहन में कि क्यों ना आज आपको मैं ऐसे वेडिंग सॉन्ग सुनवाऊँ जो सेलिब्रिटीज़ ने अपने गानों के लिए खास बनवाए थे। जी हाँ भाई, सेलिब्रिटी किसको कहते हैं, राइट? अपनी शादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो अपनी शादी के लिए गाने बनवाने कौन सी बड़ी बात है। तो आज जो मैं कुछ आपको गाने सुनवाने जा रही हूँ, दोज आर द वेडिंग सॉन्ग्स विच वर स्पेशली मेड, रिकॉर्ड किए गए थे, बनाए गए थे सिर्फ और सिर्फ ये शादियों के लिए। तो कौन से गाने किस शादी के लिए थे, बिल्कुल मैं आपको बताती रहूँगी। तो पहला गीत जो है हर्षदीप कौर की आवाज़ में हम सुनेंगे, और दीपिका और रणबीर की जब शादी हुई थी तब ये गाना इस्तेमाल किया गया था फॉर देयर वीडियो शूटिंग या फिल्मिंग, जो भी आप कह लें। तो चलिए सुनते ये बहुत ही खूबसूरत गीत हर्षदीप कौर की आवाज़ में, पीर वीतू ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो, एक खास सेगमेंट के साथ वेडिंग सॉन्ग्स, लेकिन जो फिल्मी नहीं है लेकिन हमारे फिल्मी कलाकारों ने बिल्कुल इस्तेमाल किए अपनी शादी के लिए।

यार भी तू करार भी तू, क्या बात है भाई। जब शादी हो दो ऐसे स्टार्स की, सुपर स्टार्स की, तो हमारे जैसे तो हो गए नहीं उनकी शादियों में कि डीजे ने जो गाने बजा लिए वो चल गए। तो इसीलिए जो सारे गाने मैं आपको सुनवा रही हूँ, दिस वॉज स्पेशली रिकॉर्डेड फॉर दिस वेडिंग्स। तो चलिए अगला गीत मैं आपको जो सुनवाने जा रही हूँ, वो जो गीत था वो थी हमारी प्यारी सी जोड़ी कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की। जब शादी हुई थी तब ये का गीत खास करके उनकी शादी के लिए बनाया गया था। मैं हूँ नीलम, आज आपके लिए गैर फिल्मी गाने ही लाई हूँ, लेकिन उस गाने में शादी की बात है। जी हाँ, कुछ बातें होती रहेगी इस सेगमेंट में अप अंटिल वी गो टू द कमर्शियल ब्रेक। और ये सारे गाने दिस वर यूज फॉर सेलिब्रिटी वेडिंग्स, खास रिकॉर्ड किए गए थे। तो ये जो अगली शादी है वो है कियारा एंड सिद्धार्थ की।

कियारा और सिद्धार्थ की शादी में ये गाना ऑफ कोर्स आपने देखा होगा यूट्यूब पे और उनकी जितने भी इंस्टा अकाउंट्स है वगैरह वगैरह. एंड यू नो उनकी जो भी पर्सनल लव स्टोरी होती है, जो भी हमारे सेलिब्रिटीज़ के वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि उनकी जो भी अपनी लव स्टोरी है, उनके जो मुलाकातें होती हैं, उनके जज्बात होते हैं, ये सारी बातें ध्यान में रखकर ये गाने सिलेक्ट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं कि जब उनकी शादी हो तब ये शादी में ये कुछ यूनिकनेस रहे, राइट, एक अनोखापन, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ है, उनकी शादी तो आम शादी होगी नहीं क्योंकि वो तो आम है नहीं, और इसीलिए उनकी शादी आम शादियों से कुछ अलग बन जाए, अनोखे लुक के साथ आ जाए, इसीलिए खास तौर पर ये गाने बनाए जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट शादी जहाँ पर हम जा रहे हैं, ये जो गाने सुन रहे हैं, दैट इज़ फॉर अनुष्का शर्मा, जी हाँ, एंड विराट कोहली की शादी में ये गीत लिया गया था, ये गीत खास बनाया गया था दिन सगना था. ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो, मैं हूँ नीलम आप ही के साथ.

104.9 FM फनी रेडियो पे आज खास सेगमेंट, हालांकि गैर फिल्मी गानों का ही सेगमेंट है, लेकिन उसमें वेडिंग सॉन्ग्स, और वो भी मैं सोच रही थी कि गैर फिल्मी गानों में वेडिंग सॉन्ग्स मैं आपके लिए कैसे लाऊं। तब मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना हम सेलिब्रिटीज़ की वेडिंग्स में जो गाने लिए गए थे या इस्तेमाल किए गए थे, खास बनाए गए थे, वहीं मैं आपके लिए आज लाई हूँ। एंड नेक्स्ट वेडिंग जहाँ पर हम जाएंगे वो है परिणीति चोपड़ा और उनके साथ जो है वेडिंग की बातें। एंड मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि इज़ इट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। देखिए, जैसे मैंने कहा कि उनकी आम शादी नहीं है, ये वी ऑल नो दैट कि जब सेलिब्रिटीज़ की शादी होती है इट इज़ नॉट द रेगुलर शादी, तो कुछ अलग होना चाहिए, अनोखापन, उनकी जो प्रेम कहानी है, उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उनके जो भी फैंस हैं उनको भी लगना चाहिए कि कुछ अलग हो रही है बातें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट इज़ मे बी मोर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एज वेल, राइट? कि जब रील्स बनती है तो भाई रील्स में अच्छे बैकग्राउंड हो, लेकिन ऐसे बैकग्राउंड गाने ना हो कि हम किसी और की फिल्मों से सुने, वो हमारे ही अपने गाने हो। तो खैर, ये आपकी भी मैं राय लेना चाहूँगी, और आपकी शादी में आपने कोई खास ऐसा गाना हो जो आपके लिए ही बनाया गया हो तो हमें भी बताइएगा। 972-235-5555 आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ।

परिणीति चोपड़ा की शादी का खास गाना आपने सुना, और आज के जितने भी गाने हैं ऑफकोर्स हमारे सेगमेंट के मुताबिक गैर फिल्मी है, लेकिन इस गैर फिल्मी गानों में मैं खास जो प्रस्तुति लाई हूँ दोज आर द वेडिंग सॉन्ग्स, क्योंकि आज की हमारी जो बातें हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे फनीशा रेडियो पे फनीशा.net पर आपने भी आपकी राय दी होगी। सो आज अलग अलग शोज़ में आप अलग अलग कैटेगरी के गाने सुनेंगे, और यहाँ पर मेरे साथ अप अनटिल द नेक्स्ट कमर्शियल ब्रेक आप सुनेंगे कुछ वेडिंग सॉन्ग्स, लेकिन जैसे कि मैंने कहा खास शादियों के लिए, जो आम शादी नहीं थी खास शादी थी, और उनके लिए बनाए गए रिकॉर्ड किए गए थे ये सारे गाने। और बहुत सारे कॉल्स मैं ले रही हूँ ऑफ एयर, और इतनी सारी राय इतनी सारी बातें हो रही है, तो बिल्कुल आपसे भी बातें करती रहूँगी, लेकिन उससे पहले कनेक्टिंग अमेरिका को याद कर लूँ। कभी कभार ये होता है ना कि हमें लगता है कि यार बिजनेस करते हैं लेकिन एक्सपेंसेस इतने हैं प्रॉफिट दिखता ही नहीं है, है ना। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो वेल मैं आपको एक नंबर देती हूँ जिनका नाम है जेम्स, यू कैन कॉल हिम 321-888-7345, और यू कैन विजिट हिम कनेक्टिंग अमेरिका financials.com, जहाँ पर वो आपको मदद करेंगे कि कैसे आपकी जो इनकम है आपके बिजनेस की जो एक्सपेंसेस है उसे इनकम में कैसे तब्दील किया जाए। वंस अगेन इट इज़ कनेक्टिंग अमेरिका 321-888-7345 और कनेक्टिंग अमेरिका financials.com। शादी के इतने सारे गाने हैं, और जब मैं ढूंढ रही थी तो सेलिब्रिटीज़ ने एक से बढ़कर एक गाने भी अपनी शादी के लिए चूज़ किए हैं। तो चलिए अगली सेलिब्रिटी की शादी हम जाएंगे, कृति खरबंदा की शादी जब हुई थी उनकी पुलकित सम्राट के साथ ये गाना इस्तेमाल किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था 104.9 FM आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ।

0: ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ।
1: कुछ वेडिंग सॉन्ग्स जो बनाए गए थे खास सेलिब्रिटीज़ के लिए, बहुत सारी बातें हो रही है हमारे लिसनर्स के साथ ऑफ एयर। एंड यू नो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सेलिब्रिटी, उनकी खास शादी में खास गाने के अलावा, मैं मानती हूँ कि सोशल मीडिया के भी बहुत सारी इन्फ्लुएंस हो सकती है कि आजकल शादी की फिल्में जब बनती है सोशल मीडिया में रील्स, एंड दे हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, सो फॉर देम ऑल्सो इट्स अ कस्टमाइज ट्रैक, राइट? कस्टमाइज ट्रैक बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में जो दिखाई जाती है, एंड ऑल्सो ट्रेडमार्क। देखिए, जब अनुष्का की शादी हो, दीपिका की शादी हो, बड़े बड़े कलाकार की शादी हो, तो दिस आर द सेलिब्रिटीज़ जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू सेट अप अ न्यू ट्रेंड, राइट? तो क्यों भाई, हम क्यों डीजेस के वहीं प्लेलिस्ट के गाने अपनी शादी के लिए लगाएंगे? दे वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट बिकॉज दे आर दीपिका पाडुकोन और दे आर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। सो एक नया ट्रेंड भी जब वो सेट करना चाहते हैं तब ये खास गाना बनाए जाते हैं। और वहीं खास गाने इतने सारे हैं, व्हेन आई एम लुकिंग अप टू द लिस्ट, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपनी शादी के लिए अलग अलग गाने बनवाए थे। खैर, हमारी कोशिश थी आज के हमारे सेगमेंट में, वेडिंग सॉन्ग्स के सेगमेंट में, आपके लिए कुछ खास गैर फिल्मी गाने जो बनाए गए थे वेडिंग्स के लिए ऑफ द सेलिब्रिटीज़।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
6: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स Even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
7: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
3: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.

एंड वेलकम बैक. दिस इज़ KZMP 104.9 FM फनीशा रेडियो पे. मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ हर शनिवार की दोपहर एंड ऑल्सो ऑन संडे आफ्टरनून्स 12 से 3 के बीच में. ऑन सैटरडे संडेज आपकी और हमारी मुलाकात होती है 12 से 2 के बीच में, जहाँ 1 से 2 के बीच में गैर फिल्मी गाने लाती हूँ आपके लिए. आज 1:30 बजे तक आपने वेडिंग सॉन्ग, सेलिब्रिटी के वेडिंग सॉन्ग सुने. भाई हमें शादी में बुलाए ना बुलाए, हमने गाने तो उनके बिल्कुल हम सुन सकते हैं, क्योंकि आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे. तो एक खास प्रस्तुति है हमारे फनीशा रेडियो की तरफ से कि आप हर एक शो में सुनेंगे कुछ अलग अलग कैटेगरी के गाने हर एक सेगमेंट में. तो हमारे साथ सेगमेंट रहा 1:30 बजे तक. अब कुछ और भी गैर फिल्मी गाने हो जाए, लेकिन उससे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का. कभी कभार ये बातें होती है कि हम जब जॉब से 2 घंटे 3 घंटे की छुट्टी ले लेते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाना है. लंबी सी कम्यूट भी होती है, वहाँ पे जाके भी 1 घंटा आप इंतज़ार में बैठते हैं कि डॉक्टर कब आएंगे, कब हमारी बारी आएगी. बट वेन यू गो इनसाइड यू फील के अरे भाई 2 मिनट में बातें ख़त्म हो गई. वेल मैं आपको एक ऐसा नाम देती हूँ कि जहाँ पर 30 मिनट, जी हाँ पूरी 30 मिनट्स हो गया आपकी अपॉइंटमेंट, एंड दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज दे ट्रूली अंडरस्टैंड योर हेल्थ. जो टेक्स टाइम, ये ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 2 मिनट में हो जाती है, और इसीलिए इट इज़ अ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर जहाँ पर आप एक फैमिली है. तो आज भी आप अगर कॉल करना चाहें 217-454-4694, मोर इन्फॉर्मेशन दैट इज़ अ टेक्सटिंग, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कॉल देम इट इज़ 214-666-2259, दैट इज 214-666-2259. And the email address is passionhealthphysicians@gmail.com. That is once again Passion Health Primary Care. बने रहिए हमारे साथ 2 बजे तक. कुछ गैर फिल्मी गाने लाती हूँ, तो गैर फिल्मी गाने के साथ बातें भी होती है इन्हीं कलाकारों की आपके साथ एवरी संडे टिल 2 PM on 104.9 FM.

आदित्य रिखारे की आवाज़ के साथ मम्मी खान की भी आवाज़ थी। और अगर आप ये नहीं जानते कि आदित्य रिखारे कौन है, वेल, उनका असली नाम आदित्य शर्मा है, जो अपने एक ओरिजिनल गाने के साथ बहुत बहुत पॉपुलर बन गए। और वो ओरिजिनल गाने का नाम था फासले। ये फासले गाने को करोड़ 100 एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले थे। और उसके बाद फिर क्या था, वो इतने पॉपुलर बन गए इन द यूथ कि उनके सारे गाने बहुत पॉपुलर बनने लग गए। एंड ही गॉट इन्वाइटेड टू सिंग इन वेरियस कॉन्सर्ट्स, कोक स्टूडियो भारत, कोक स्टूडियो, हर जगह हर प्लेटफॉर्म में वो आने लगे, अपनी प्रस्तुति देने लगे। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद गाने लिखते भी है, गाने बनाते भी है, और उनका संगीत भी खुद उनका रहता है, एंड गिटार भी उनके हाथ में अक्सर रहता है। ही ऑलवेज लाइक टू प्ले गिटार वेन एवर इज ऑन द स्टेज। तो ये सारी बातों के साथ पॉपुलर बन गए हैं आदित्य शर्मा, जिनका नाम, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने स्टेज नेम अपना शर्मा निकालकर आदित्य रिखारे रख दिया है। ऐसी बहुत सारी बातों के साथ हम आते हैं ये प्रस्तुति के साथ, गैर फिल्मी गाने लाते हैं आपके लिए एवरी संडे ऑन 104.9 FM फनी एशिया रेडियो।

अच्छा, आपने समय रैना का नाम सुना है? आप सोच रहे होंगे कौन है भाई। तो समय रैना एक शो किया करते थे, इंडियाज़ गॉट लैटेंट, ये उनका शो का नाम था, नॉट टैलेंट, लैटेंट। और वो एक बार फिर से दूसरी सीज़न के साथ आ गए हैं, और ये काफ़ी लंबे गैप के बाद आए हैं, जहाँ पर एक नया शो एंड उनकी खुद की एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ये शो रिलीज हो गया। नॉट ओनली दैट, चलिए अब तक तो आपने सुना कि यूट्यूब चैनल पर आ रही है बातें, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि पहली बार ये होगा कि नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर दोनों में साथ में ये शो अपलोड होगा। तो जो उन्होंने एक डील बनाई है, एंड इट इज़ अ वेरी रेयर थिंग, जब भी कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को या जब भी कोई आर्टिस्ट को नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर मौका मिलता है, राइट, सोचिए ज़रा, नेटफ्लिक्स इज सच अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, राइट, उनकी पहली ये जो एक शर्त होती है कि भाई आपकी जो भी पर्सनल अकाउंट्स है, आपकी जो भी पर्सनल बातें होगी, नथिंग डूइंग, हमारी जो ये प्लेटफॉर्म है, हमारी ब्रांड है, इट्स अ नेटफ्लिक्स ब्रांड, तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग विथ योर पर्सनल अकाउंट या आपकी खुद की प्रमोशन नहीं करेंगे। लेकिन सोचिए ज़रा, ये समय रहना जो है, ये खुद एक यूट्यूबर हुआ करते थे, यूट्यूब पर अपने शो के साथ वो आते थे जिसका नाम था इंडिया गॉट लैटेंट। तो वो शो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था, बन गया था, उसमें काफ़ी इंटरव्यूज़ जो थे वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल बन गए थे। तो नेटफ्लिक्स ने ये शो साइन किया लेकिन समय रैना ने एट द सेम टाइम ये कहा था कि मेरी जो यूट्यूब पर चैनल है उसको कुछ भी नहीं होगा, मेरी यूट्यूब चैनल पर इतने ही जितने भी आपके शोज होंगे वहाँ पर भी यहाँ इतने शो अपलोड होंगे। एंड नेटफ्लिक्स अग्रीड, विच इज़ अ वेरी रेयर थिंग, क्योंकि कोई भी मीडिया हाउस हो, कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म हो, दे वुड नेवर अग्री कि यू कैन हैव योर ओन प्राइवेट चैनल एज वेल एज आप खुद के अलावा नेटफ्लिक्स पर भी आ रहे हैं। तो कभी कभार ये बातें हो जाती है कि जब कोई इतना बंदा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है या कुछ, आई डोंट नो अबाउट कॉन्ट्रोवर्शी, क्योंकि उनके जो इंटरव्यूज थे वो पॉलिटिशियंस के साथ भी थे, लीडर्स के साथ भी थे, लेकिन कभी कभार ये बातें हो जाती है कि वन लाइन वन स्टेटमेंट कैन गो समथिंग रॉन्ग, राइट। तो ये शायद उनके साथ हुआ था। खैर, तो उनका नाम है समय रैना, जो नेटफ्लिक्स पर अब उनके शोज दिखेंगे। मैं हूँ नीलम, जी हाँ, आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत, चल चलिए नदिया के उस पार। वेल, डालस में नदी तो नहीं है लेकिन लेक्स बहुत सारे हैं ना, और मौसम भी है कि आप अगर लेक पर जाना चाहते हैं, आज फादर्स डे भी है, वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी है, एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल योगा डे भी है। अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो वेल, आई मस्ट कमेंड यू, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी डिसिप्लिनरी एक्शन। आपको बहुत ही डिसिप्लिन होना पड़ता है, डेडिकेटेड होना पड़ता है टू डू योगा, एंड दैट टू एवरी डे। अगर आप हर रोज़ करते हैं तो मैं आपको सलाम करती हूँ और आपकी बिल्कुल तारीफ करती हूँ। आपका नाम नहीं जानती, लेकिन जो जितने लोग भी हमारे लिसनर्स योगा करते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डेडिकेटेड थिंग टू डू इट, एंड डिसिप्लिन, एज आई सेड, यू नो, हर किसी चीज़ में डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली जब आप ठंड में हो। गर्मी में तो चलिए उठना जल्दी, इट्स नॉट रियली दैट हार्ड थिंग, लेकिन जब ठंड में कोई कहे कि अरे उठकर योगा करना है, तो लगता है कि यार योगा ही है, थोड़ी देर और सो जाते। बट इफ़ यू आर अ रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर, आई मस्ट से यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड थैंक यू फॉर बींग इन द कम्युनिटी। और हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन भी करते हैं, योगा भी करते हैं, एंड दे ऑल्सो ट्राई टू टीच अदर्स। मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली कॉल्स, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड। और आज के दिन आपका और हमारा साथ सिर्फ 2 बजे तक रहता है। जी हाँ, 1 से 2 के बीच में ये कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ, एंड सैटरडेज इट इज टिल 3 PM। पेपॉन है अ वेरी ग्रेट सिंगर जिन्होंने बॉलीवुड में कम गाने गाए हैं, लेकिन मोर देन बॉलीवुड उन्होंने प्राइवेट एल्बम्स, प्राइवेट कॉन्सर्ट, आई वुडंट से ओनली एल्बम्स, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे धुरंधर कलाकारों के साथ कॉन्सर्ट्स में गाने गाए हैं। बेट सलीम सुलेमान, वर्ल्ड म्यूज़िक डे की कॉन्सर्ट की बात हो या कहीं पर भी, तो उन्होंने खुद के साथ भी गाना गाया है, लाइक इंडिविजुअली, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कलाकारों के साथ भी गाने गाए, कॉलैब भी किया है। तो चलिए आज ये गाना आपको मैं जो सुनवा रही हूँ, इट्स अ वेरी फ्रेश सॉन्ग, जस्ट 2 डेज बिफोर दिस गॉट रिलीज्ड, जिसमें है श्रेया घोषाल, पेपॉन, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज सलीम सुलेमान। वो अक्सर अपनी जो भी कॉन्सर्ट करती, जिसका नाम है भूमि, इट्स एन एनुअल कॉन्सर्ट, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे धुरंधर को सबको साथ में लाकर, अलॉन्ग विद देयर 150 म्यूजिशियंस, उनके कोरस सिंगर, सबको साथ लाकर ऐसी बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल प्रस्तुति उनकी होती है। तो एक ऐसी ही बात जहाँ पर आप सुनेंगे ये गाना, जिसमें श्रेया घोषाल है, पेपॉन है, और उनके बहुत सारे साजिंदे हैं विद देयर एंटायर बैंड, एंड इट इज़ पहले क्यों ना मिले।
1: I like it. Can we do it?

रह जाएगा ये रंज हमेशा पहले क्यों ना मिले। बहुत ही खूबसूरत ये लाइव कॉन्सर्ट से लिया गया था ये गीत, ये गज़ल जो भी आप कह लें। श्रेया घोषाल के साथ पेपॉन की आवाज़, सलीम सुलेमान की ये कॉन्सर्ट होती है एनुअल कॉन्सर्ट जिसका नाम है भूमि, उससे ली गई थी ये बातें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके ढेर सारे कॉल्स के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, ये प्रस्तुति आपके लिए मैं लाती हूँ एक छोटी सी कोशिश के साथ हर वीकेंड में 12 से 3 के बीच में, ऑन सैटरडेज एंड संडेज 2 बजे तक। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड। आज फादर्स डे की बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई, उसी के साथ वर्ल्ड म्यूजिक डे। म्यूज़िक आपकी ज़िंदगी में हमेशा बना रहे, और चूंकि आज वक्त कम होता है, कल भी मैंने बहुत सारी वर्ल्ड म्यूज़िक डे की बातें की थी आप सभी के साथ। वी डिड टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स, सितार, तबला, बांसुरी की बातें की थी, कुछ उसके इतिहास की बातें की थी, क्योंकि संगीत हर कोने में है, हर जगह है। मेरी तरह आपको भी संगीत से ढेर सारा प्यार होगा, और आप भी मेरी तरह संगीत हर जगह ढूंढते होगे, चाहे वो संगीत आसमान में पंखियों की आवाज़ में हो, नदी के साथ हो, समुंदर की लहरों में आप सुन लीजिए, बारिश की बूंदों में आप सुन लीजिए, बौछार में सुन लीजिए, संगीत प्रकृति के हर एक कोने में। और वही संगीत, अच्छा संगीत हम लाने की कोशिश करते हैं आपके लिए एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो। इसी बात के साथ मैं नीलम लूंगी आप सभी से इजाज़त, मुलाकात होगी अगले शनिवार, तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड एंजॉयिंग फन एशिया रेडियो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Apni roots bhi aur Texas ka swag bhi, dono ek saath ek hi jagah, HEB mein. Royal Sona Masuri rice ho, Nanak paneer ho, ya Parle Ji biscuits. Wahi desi taste jo dil ko ghar jaisa feel de. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites, jo sirf yahi milte hai. Ek hi trip, ek hi store. और सारा सामान डन तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट एचईबी पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ एचईबी हियर एवरीथिंग्स बेटर
5: द टेक्सास सुपर किंग्स आर हियर एंड द एक्शन इज एब्सोल्युटली हीटिंग अप डोंट मिस अ सिंगल थ्रिलिंग मोमेंट सिक्योर योर सीट्स नाउ टू वॉच द टेक्सास सुपर किंग्स लाइव एट ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम वी हैव गॉट इलेक्ट्रीफाइंग मैचेस ऑन थर्सडे जून 18th सैटरडे जून 20th संडे जून 21st Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी। जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
11: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
12: जल्दी है क्या, पास आती है क्या?
13: You are listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. It is officially 2:04 p.m. on a Sunday, and that marks the beginning of our hourly show, The Melting Pot, our show that runs from 2 p.m. to 3 p.m. Enjoy.

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels, tradition crafted, style defined.
2: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
2: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
2: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
2: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो।
9: बेटा, 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
9: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
9: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
13: All right, welcome back. This is 104.9 FM Fun Asia Radio, The Melting Pot. Sanvi and I have reached the second half of our show, but don't worry, we have lots more fun sports updates and more. But of course, as promised earlier before the ad break, Sanvi gave her dedication to her father for Father's Day, and of course, I will go next. So my dad has requested this song because it has such a special meaning in our lives. My dad is my biggest supporter. He is the reason I do so much in life. He's the editor of my podcast. He drives me to all my my debate tournaments, all my soccer games, all my soccer practices, and I will forever appreciate that. But of course, this song has a special connection in our relationship. It is from the movie Happy New Year. And if you know me, you know I've seen that movie more times than a human could possibly count. And for almost every single watch, my dad was sat on the couch with me singing along to every song, but especially this one, which has overall become our favorite of the entire movie, and as we define our song, and it is India Wale.

0: तो छोरों को पीटना है कि इतनी बड़ी सजा आज तक पूरे विश्व में किसी को ना मिली होगी।
1: काली तो उसने मने दी थी ना, तन्ने आदरवाणी की जरूरत थी है?
0: अब बता रही है

0: तो जो भी कहेगी सब कराएंगे मम्मी।
1: बस इस पहलवानी से बचा ले।
2: साढ़ भर के लिए भूल जाओ कि थारी कोई माँ है।
3: रे इतनी जल्दी भूलगी?
4: जो के बात कर रहा है महावीर, छोरियां और अखाड़े में इस उम्र में पाप करवावेगा के?

0: Okay, so I hope you enjoyed that sweet song that was picked for our last song for today. It was definitely a nice closing. And to all the fathers, again, once again, we cannot say enough happy Father's Day. And although we didn't get through many segments this show, we are completely and totally okay with that because we got to celebrate some of your most important people. With that being said, it is time to close out the show, unfortunately. But don't be worried. Next week, we will be back from 2 to 3 p.m. right here on Fun Asia Radio 104.9 FM. We hope you guys have a lovely rest of your week. This is RJ Sonvi
1: and RJ Rhea
0: signing off.
1: Happy Father's Day.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
5: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
6: कौन सा?
5: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
6: अरे सारे तो सेम है.
5: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
6: ओ हाँ, ये तो अलग है.
7: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
8: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां मां सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
9: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
8: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
10: अरे वो केक आया क्या?
6: डीजे कौन हैंडल करेगा?
10: डेकोर वाले को कॉल किया,
6: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया.
10: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया.
6: ऑसम इवेंट्स?
10: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड द टीम विल हैंडल एवरीथिंग.
11: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म.
10: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ.
7: कॉल नाउ एट 214-725-7466. दैट्स 214-725-7466 एंड टर्न योर सेलिब्रेशन इनटू एन ऑसम इवेंट.
12: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
13: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
14: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
15: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
14: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
15: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
16: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
14: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
17: डिड यू नो लेसिक इज जस्ट वन ऑफ 6 वेज टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट्स? आई एम डॉक्टर शहजाद पातलीवाला. यस, योर आई सर्जन इज देसी. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
15: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
17: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
1: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha from June 28th through July 4th, 2026. Experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
18: Hi, this is Janvi Kapoor, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी फिल्म के टाइटल ट्रैक से हमने आज के इस खूबसूरत सेगमेंट का आगाज किया। खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनेशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक। आज हम आपके लिए एक बहुत खास सेगमेंट पेश कर रहे हैं। दिस सेगमेंट इज टू सेलिब्रेट वर्ल्ड म्यूजिक डे। आई नो आज फादर्स डे भी है एंड आई'd लाइक टू विश ऑल द फादर्स अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। हाउएवर, हमारे प्रोग्राम का ये पहला हिस्सा हम तमाम आई गेस टाइम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 70s के बेस्ट सुपर हिट गानों को डेडिकेट करेंगे। आज हम आपको बहुत ही रोमांटिक किस्म के गाने सुनवाएंगे। दैट्स द जॉनरा दैट आई हैव सेलेक्टेड, यानी कि आज हम आपको एक से बढ़कर एक रोमांटिक गाने सुनवाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी सिलेक्शन पसंद आएगी। सो बेसिकली जो पहला गाना हमने आपको सुनवाया वो 70s के डेकेड का बेहतरीन और मोस्ट फेवरेट लव सॉन्ग था। आई एम श्योर आप एग्री करेंगे मेरे साथ। आवाज़ थी इस गाने में लता मंगेशकर और मुकेश साहब की।

यकीन मानिए, इवन दो इट्स सच एन ओल्ड सॉन्ग, यानी कि 70s का, कितने 50 क्या मतलब कितने साल बीत गए हैं राइट, इसके बावजूद आज भी ये गाना सुनकर हम बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सो आई एम श्योर कि आज मेरे साथ जब आप वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेट करेंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे, बिकॉज आई हैव गॉट सम ऑफ द बेस्ट लव सॉन्ग्स लाइंड अप फॉर यू। आइए अब आपको सुनवाते हैं 80s का नंबर वन, यानी कि 80s के डेकेड का नंबर वन लव सॉन्ग किशोर कुमार साहब की आवाज में। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू फन एशिया रेडियो।

कुदरत फिल्म से लिया गया ये गाना किशोर कुमार साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आप। ये गाना हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर पिक्चराइज किया गया था। अगर अभी अभी ट्यून इन किया है आपने तो स्वागत करती हूँ आपका। यू आर लिसनिंग टू दिल से और आज हम वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें कि मेरा प्लान है कि आपको पिछले तमाम डेकेड्स यानी कि 70s से शुरू कर 2026 तक का बेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर लव सॉन्ग आपको सुनवाऊंगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि हर गाना आपको मुकम्मल सुनाया जाएगा एज एन इन इट्स इंटायरिटी। यूजली हमारे पास वक्त कम होता है तो हम हर गाना आधा या अधूरा सुनाते हैं आपको, लेकिन आज ये गाने इतने स्पेशल हैं, इतने पॉपुलर और सबके मन चाहे और फेवरेट हैं, दैट इट वुड बी अनफेयर कि आज जब हम वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और रोमांटिक गानों का जानरा मेरे जिम्मे आया है तो आई हैव टू डू जस्टिस एंड प्ले ईच एंड एवरी सॉन्ग टू कम्प्लीशन। आई होप कि आज के इस सफ़र में आप मेरे साथ बने रहेंगे। इट इज़ 17 minutes past 3 एंड टुडेज़ सेगमेंट ऑफ दिल से इज़ ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज। ड्रीम होम मॉर्गेज के जरिए आप अपने सपनों का घर हासिल कर सकते हैं। इफ़ यू ऑलवेज वॉन्टेड टू ओन योर ओन होम, दे कैन हेल्प यू आउट। यूजली इट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल बट नॉट थ्रू ड्रीम होम मॉर्गेज। दे मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज हैसल फ्री फॉर यू। They are approved and licensed in 50 states. So, chahe aap Texas mein ho ya kahin aur, you can still use their services. So, call kijiye Mr. Hussain Panjwani ko at 972-245-LOAN or visit dreamhomemortgage.com. 70s se 80s aur ab aaiye lekar chalte hain aapko 90s ke most popular love song ki taraf.

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गाना सुन रहे थे आप, टेकन फ्रॉम द फिल्म साजन। ये गाना संजय दत्त और माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज किया गया था। इफ यू आर जस्ट ट्यूनिंग इन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिल से, जिसमें आज वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट करते हुए हम फोकस कर रहे हैं तमाम गुजरी हुई डेकेड्स के टॉप हिट रोमांटिक गानों पर। और उसी के सिलसिले में हम अब आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं आपको 2000 के डेकेड का मोस्ट फेवरेट लव सॉन्ग। एंड आई एम श्योर व्हेन यू हियर इट यू विल एग्री विद मी। एंड द बेस्ट पार्ट, हम हर गाना आपको अपनी एंटायरिटी में सुनवा रहे हैं।

0: पिघलने लगा।
1: We'll take a short break. When we come back, World Music Day celebration.
2: शुभ दिन आ पहुंचा है, एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
3: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
5: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
6: तारीख पर तारीख।
7: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
5: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
11: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस।
12: आई एम नवनीता, योर ट्रस्टेड रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी।
11: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
13: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
14: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
15: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
14: कहाँ?
16: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
17: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
18: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, इरविंग और गार्लिन में उपलब्ध।
19: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स ऑफ गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
7: प्लानिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग और प्राइवेट इवेंट? मेक योर स्पेशल मोमेंट्स इवन मोर मेमोरेबल एट फन पिज्जा किचन कॉलोनी। रेंट प्राइवेट पार्टी स्पेस फॉर 3 hours एट जस्ट $200 विद कस्टमाइज्ड मेन्यू ऑप्शंस टू सूट योर प्रेफरेंसेस। सेलिब्रेट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज एंड एंजॉय योर स्पेशल डे विद अस। टू बुक योर इवेंट कॉल 9896217293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
9: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
0: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
18: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
0: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
18: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
0: सच में? सब संभालेंगे?
18: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
9: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

taken from Aashiqui 2, Arijit Singh ki awaaz mein sun rahe the hum ye gana, jo ki Aditya Roy Kapoor aur Shraddha Kapoor par picturize kiya gaya tha. Khush aamdeed kehti hoon tamam sunne walon ko. Thank you so much for tuning in to Dil Se. Main hoon aapki host, aapki dost Amreen Hasnat. Happy Father's Day to all the dads who are tuned in right now and celebrating Father's Day. Saath hi saath hum World Music Day bhi celebrate kar rahe hain. और मेरे हिस्से में आए हैं रोमांटिक गाने. सो पिछले आधे घंटे से ऊपर हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए द बेस्ट, द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स दैट एवर केम आउट ऑफ बॉलीवुड. 70s से हमने आगाज़ किया, 70s के डेकेड, 80s का गाना, 90s का, 2000 और फिर ये पहुंच गए हम 2010 से आगे. और अब आगे चलते हैं 2022 की तरफ और सुनते हैं उस साल का मोस्ट फेवरेट लव सॉन्ग.

अपना बना ले भेड़िया फिल्म से लिया गया ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप. इट्स 42 मिनट्स पास 3 ऑन दिस 21st of June 2026. 90 degrees Fahrenheit इज अ करंट टेम्परेचर. टुडे विल बी मोस्टली क्लाउडी, हाई ऑफ 91 एंड अ लो ऑफ 74 degrees Fahrenheit. सिंस हमारा प्लान था पूरा घंटा हम ये रोमांटिक गाने आपको सुनवाते, सो वॉट वी थॉट नाउ सिंस वी फिनिश्ड ऑल द डेकेड 70s 80s, 90s, 2000, 2010 और अब हम साल ब साल आगे जाएंगे. सो लेट्स एंजॉय दिस नेक्स्ट ट्रैक जो कि 2023 का मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग था. आई होप कि सो फार आपको हमारी सिलेक्शन पसंद आ रही है. एंड एज आई मेंशन आज के सेगमेंट में हमने आपको तमाम गाने कंप्लीशन तक सुनाए एज इन देयर एंटायरिटी.

शाहरुख खान और तापसी पन्नू पर पिक्चराइज किया हुआ ये गाना डंकी फिल्म से लिया गया था एंड दिस वाज अ 2024 का मोस्ट फेवरेट हिट गाना. और अब 2025 की तरफ चलते हैं, तो आइए सुनते हैं कि बाय ऑल अकाउंट्स इट सीम्स लाइक दिस वाज द नंबर वन लव सॉन्ग फॉर द ईयर 2025.

एक दीवाना एक दीवानियत फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया एंड बाय ऑल अकाउंट्स 2025 का ये मोस्ट पॉपुलर लव सॉन्ग था। और अब आज के सेगमेंट को कंक्लूड करते हैं विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर लव सॉन्ग फ्रॉम 2026।

फिल्म मुगले आजम से लिए गए इस गाने से हमने आज के शब्द सेगमेंट का आगाज किया है. एंड आई डोंट नो आप में से कितने लोग गेस कर पाए हैं कि आज का वर्ड क्या है. और अगर इस गाने से नहीं किया तो डेफिनेटली इस अगले गाने को सुनकर आप समझ जाएंगे कि आज का वर्ड, आज का शब्द क्या है. सही जवाब देने वाले को मिलेगा इनाम. सो कॉल कीजिए 972-235-5555.

ऑलराइट, हमें बहुत सारी कॉल्स आई और सभी को लगता है कि आज का वर्ड है प्यार, लेकिन प्यार वर्ड नहीं है. गाने अगर आपने सुने हो दोनों, तो दे हैड वन सिमिलर वर्ड. पहला गाना था प्यार किया तो डरना क्या, और इसमें है तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर. ऑलराइट, वी आर गोना गो अहेड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग. और जैसा कि आप जानते हैं, शब्द सेगमेंट में हम शुरुआत करते हैं पुराने गानों के साथ और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं. तो आइए चलते हैं अगले गीत की तरफ. होपफुली इस गाने को सुनकर आप समझ जाएंगे कि वर्ड क्या है.

पहली पहली बार देखा ऐसा जलवा, ये लड़की है या शोला, शोला है शोला, शोले से डरना। ऑल राइट, सो आज का वर्ड था डर या डरना। बिंदिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और जीता फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। बाकी वो तमाम लोग जिन्होंने ट्राई किया, आप सबका भी बेहद शुक्रिया। एंड एज यू नो, शब्द सेगमेंट में अब हम तमाम वो गाने आपको सुनवाएंगे जिसमें इस वर्ड, इस लफ्ज का इस्तेमाल होता है। तो आइए सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 81 में रिलीज हुई फिल्म हीरो के इस गाने की तरफ।

में जीना, लव लव लव फिल्म से लिया गया ये गाना बप्पी लहरी की आवाज में सुन रहे थे आप। इफ यू हैव जस्ट ट्यून्ड इन, स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बिंदिया जिन्होंने सही जवाब दिया हमारे आज के वर्ड के लिए। आज का लफ्ज, आज का शब्द है डर या डरना। सो जितने भी गाने आज के सेगमेंट में हम आपको सुनवाएंगे वो उसी वर्ड से रिलेटेड होंगे। और जैसे कि हमने बताया इस सेगमेंट में हम शुरुआत करते हैं पुराने गानों से और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब आइए अब सुनते हैं ये अगला गाना 90s का है, आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की और ये गाना पिक्चराइज किया गया है आमिर खान और माधुरी दीक्षित पर।

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: शुभ दिन आ पहुंचा है, एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
3: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
4: भूख लगी
5: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
8: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologereeshwar.com.
10: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
11: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
10: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं।
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं।
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं।
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
14: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
15: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
16: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
17: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

धक धक करने लगा। अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज में फिल्म बेटा से लिया गया ये गाना आप सुन रहे थे, जो कि माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर पर पिक्चराइज किया गया था। इफ यू आर जस्ट ट्यूनिंग इन, ये है सेगमेंट शब्द का, जिसमें आज का वर्ड है डर या डरना, और उसी से रिलेटेड गाने हम आपको सुनवा रहे हैं। शुरुआत की थी पुराने गानों से, आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।

आंख मिलाते डर लगता है, फिल्म में राजा से लिया गया ये गाना माधुरी दीक्षित और संजय कपूर पर पिक्चराइज किया गया था। आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। इफ यू आर जस्ट ट्यूनिंग इन, शब्द सेगमेंट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का वर्ड है डर या डरना, उसी से रिलेटेड गाने हम आपको सुनवा रहे हैं। 45 मिनट्स पास्ट फोर, टुडे इज 21st of June 2026. I hope you all are doing well, enjoying Father's Day with your families. I do want to remind you, Vishal and Shekhar will be performing live with some of Bollywood's biggest super hits. And this super hit tour will be happening on Sunday, July 12th at the Curtis Covell Center in Garland. Tickets aapko cashpatelproductions.com par mil jayenge. Aaiye segment ko aage badhate hain and let's enjoy this song by Kumar Sanu and Alka Yagnik.

जाती हूँ मैं जल्दी है क्या. सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म करण अर्जुन एज पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट शब्द, जिसमें आज का वर्ड है डरना. और यहाँ तो काजल डरने लगी थी. आइए चलते हैं अब 1997 में रिलीज हुई फिल्म मोहब्बत के इस गाने की तरफ.

मुझे प्यार करना सबके सामने, सुन रहे थे आप अलका याग्निक की आवाज में, आई बिलीव आई थिंक अलका याग्निक की आवाज थी एंड माधुरी दीक्षित पर ये गाना पिक्चराइज किया गया था. यू नो व्हेन आई स्टार्टेड द सेगमेंट आई वाजंट श्योर कि मुझे इतने गाने मिलेंगे कि नहीं, बट सरप्राइजिंगली डर से रिलेटेड बहुत सारे गाने हैं बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में, जैसे कि ये अगला गाना.

लगने लगा है डर, जंगल है, आधी रात है। करिश्मा कपूर और सलमान खान पे पिक्चराइज किया गया ये गाना बीवी नंबर वन से लिया गया था। हमने आज शब्द सेगमेंट का आगाज किया था मुगले आजम के गाने से, अगर आपको याद हो, 60s की फिल्म थी मुगले आजम, और उसमें एक गाना था प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप आहें भरना क्या। एंड सरप्राइजिंगली आज हमारे सेगमेंट का आखिरी गाना भी उन्हीं बोलों पर है, लेकिन दिस टाइम इट्स अ न्यूअर सॉन्ग। सो हियर इज द न्यू वर्जन ऑफ प्यार किया तो डरना क्या, गाना सलमान खान और काजोल पर पिक्चराइज किया गया है। एंड दिस इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ आवर शब्द सेगमेंट। होप यू एंजॉयड इट।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
9: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
8: Renew?
9: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
8: What better way to celebrate than with something timeless?
9: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai. Transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com. Or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
11: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1. Mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2. Masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3. Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
12: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai. New on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGPT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao. Flavor hum sambhal lenge.
13: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस
14: बिल्कुल लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं
13: सच में एक्सपेंसेस से इनकम कैसे
14: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है
13: वाह मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे
14: एग्जैक्टली अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर
13: नंबर बोल जल्दी
14: कॉल James at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com.
15: Connecting America, जहां smart business owners turn costs into cash.
16: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
17: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
18: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
17: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
19: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
20: इन प्लेनो
19: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपेटिटर कोर्ट मैच भी कॉल 469-298-3870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
16: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
21: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe Easy, live safe with Duck Time.
22: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
23: इंडिया में
0: तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
20: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
0: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
20: सच में सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
22: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप खामोशियां फिल्म का टाइटल ट्रैक. होप यू ऑल एंजॉयड इट. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से ऑन 104.9 एफएम. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त तमरीन हसनात, एंड आई विल बी विद यू टिल 6 पीएम. इट इज 10 मिनट्स पास्ट 5 एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ, जहां आप सिर्फ एक पेशेंट नहीं बल्कि फैमिली हैं. दे मेक श्योर दे गिव यू देयर अनडिवाइडेड अटेंशन, और ये नहीं कि जल्दी जल्दी आए और आपको बाहर निकाल दिया. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज ग्रोइंग एंड देयर हायरिंग एक्सपीरियंस प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस एंड साइकियाट्रिस्ट फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज. अगर आप पेशेंट केयर के मामले में पैशनेट हैं, send your resume to passionhealthphysicians@gmail.com or you can text 217-454-4699. You can also check out their website, which is passionhealthphysicians.com.

फिल्म कांटे से लिया गया। ये गाना सुन रहे थे आप ऋचा शर्मा की आवाज में। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। 39 मिनट्स पास्ट 5, यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 FM।

होप यू गाइस एंजॉयड दैट सॉन्ग फ्रॉम कॉकटेल 2. लेकर चलते हैं आपको प्रोग्राम के आखिरी गाने की तरफ. वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द ग्रेट फादर्स आउट देयर. विश यू द वेरी बेस्ट. दिस इज अमरीन हसनात साइनिंग ऑफ फॉर दिल से. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
7: अरे सारे तो सेम है.
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.
7: ओ हाँ, ये तो अलग है.
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
8: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
12: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
13: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
14: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
15: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
16: तारीख पर तारीख.
8: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
15: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
17: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
18: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
17: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.

मेरी पहचान आपसे पापा, क्या कहूँ आप मेरे लिए क्या हो। रहने को है पैरों के नीचे ये जमीन, पर मेरे लिए तो मेरा आसमान आप ही हो।

इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फनीशिया रेडियो 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके इस सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा। स्वागत करती हूं इस खूबसूरत सी संडे की शाम में आप सभी का। इस संडे की शाम में दोस्तों आपका और मेरा साथ रहने वाला है 6 से 8। जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग ऑल द वंडरफुल फादर्स आउट देयर अ हैप्पी हैप्पी फादर्स डे। आई होप ये फादर्स डे आप अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से खुशी से मना रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फोगी, गर्मी वाली। और जी हाँ, जैसे बहुत सारी गर्मी वाली कैसी भी हो हमें तो अच्छी लगती है, बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर। फादर्स डे के शुभ अवसर पर आज के शो की शुरुआत करते हैं इस ब्यूटिफुल गाने के साथ। एंजॉय दिस ट्रैक।

0: This was a very, very beautiful rendition sung by none other than our Desi girl, Miss Priyanka Chopra, on a very special day, which is called Father's Day today. वेल दोस्तों, फादर्स डे के इस अवसर पर आप सभी के लिए एक अच्छा सा, बहुत ही एक्साइटिंग सा सेगमेंट लेकर आई हूँ. आपको बता देती हूँ दैट ओमार ख्वाजा प्रेजेंट्स द डैलस हीरो डैड अवार्ड. जी हाँ, सेलिब्रेटिंग द डैड्स हु शो अप, स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड पुट फैमिली फर्स्ट. तो दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं ना, हमारे इस सेगमेंट में ओमार ख्वाजा प्रेजेंट्स, ये जो सेगमेंट है द डैलस हीरो डैड अवार्ड, जी हाँ, ये डैलस हीरो डैड अवार्ड के लिए आपको कम्पीट करना पड़ेगा. आपको मैं बता देती हूँ दैट ऑन दिस फादर्स डे ओकेजन आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑल ऑफ माई लिसनर्स जो कि फादर है. और आपको क्या करना है, आपको मुझे स्टूडियो के नंबर पे 9722355555 पे कॉल करना है एंड आपकी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करनी है अबाउट व्हाई योर डैड इज योर हीरो. जी हाँ, आपको मुझे यहाँ पर स्टूडियो के नंबर पे कॉल करके बताना है, 9722355555 पे कॉल करके आपकी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करनी है विद इन लेट से 1 मिनट. एंड आपको मुझे बताना है कि व्हाई योर डैड इज योर रियल हीरो. ऐसे में 3 से 4 कॉलर्स ऑन एयर लूंगी और उनकी स्टोरी सुनूंगी और उसमें से मुझे सबसे अपीलिंग और सबसे अमेजिंग स्टोरी जो स्टूड आउट हुई है उसको मिल जाएगा डैलस हीरो डैड ऑफ द डे अवार्ड. जी हाँ, और ये अवार्ड हमको प्रेजेंट करने वाले हैं ओमार ख्वाजा ब्रांड इंटीग्रेशन. जी हाँ, द कैंपेन सेलिब्रेट्स फादर्स हु प्रोटेक्ट सपोर्ट एंड स्टैंड बाय देयर फैमिलीज एवरी डे. इन द सेम वे ओमार ख्वाजा स्टैंड बाय फैमिलीज ड्यूरिंग सम ऑफ लाइफ्स मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट्स after an accident, helping them navigate difficult situation and fighting for the support they deserve. This positions Omar Khwaja as more than an accident lawyer. It showcases him as someone who believes in protecting families and honoring the everyday heroes in our community. So, dosto, I'm calling out all the daddies jo ki mujhe abhi sun rahe hai, jo ki Father's Day apne bachcho ke saath celebrate kar rahe hai. Aapko mujhe yahan pe studio ke number pe call karke batana है योर रियल लाइफ स्टोरी अबाउट व्हाई योर डैड इज योर हीरो. ऐसे 3 से 4 कॉलर्स में ऑन एयर लूंगी और जिनकी स्टोरी सबसे ज्यादा स्टूड आउट होंगी उनको मिल सकता है डैड ऑफ द क्या डैड ऑफ द डे अवार्ड. जी हाँ, हीरो ऑफ द डैड अवार्ड, ये अवार्ड मिलने वाला है और ये अवार्ड हमको प्रेजेंट करने वाले हैं ओमार ख्वाजा जी. And this is not the only thing, the winning dad, jinko Dallas Hero Dad Award milne wala hai, unko $50 ka Father's Day gift milne wala hai, sponsored by Omar Khwaja Accident Injury Lawyer. तो चलिए, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, जल्दी से जल्दी मुझे कॉल कीजिए और मुझे विद इन अ मिनट और सो मुझे बताइए कि व्हाई योर डैड इज योर हीरो और जो जिसकी स्टोरी सबसे ज्यादा स्टूड आउट होगी उसको मिल जाएगा ये अवार्ड जो कि मैंने अभी बोला है डैड ऑफ द ईयर अवार्ड. और ये अवार्ड हमको स्पॉन्सर किया है ओमार ख्वाजा ने. इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले गाने की तरफ.
1: हम हैं इस पर

गुड इवनिंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं दोस्तों 34 मिनट्स पास्ट 6 और मैं हूं आपकी अपनी आर्य पूर्वा। जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है उन सभी को बता देती हूँ कि आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर के साथ ही आपकी अपनी अपूर्वा को और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। एवरी संडे की शाम 206-8 रहता है आपका और मेरा साथ। आज का दिन है संडे जून 21st 2026 और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर्स डे। जी हाँ, टू ऑल द वंडरफुल डैड्स आउट देयर अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे टू यू ऑल। वेल, आप सबसे कहा था कि ओमर ख्वाजा जी प्रेजेंस द डैलस हीरो डैड अवार्ड। जी हाँ, हम ऐसे डैड को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, सेलिब्रेटिंग द डैड्स हु शो अप स्टैंड स्ट्रांग एंड पुट फैमिली फर्स्ट। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मुझे हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल करना है 9722355555 पे कॉल करके मुझे आपकी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करनी है आपके डैड के बारे में, अबाउट योर डैड, लाइक व्हाई योर डैड इज अ रियल लाइफ हीरो डैड। ऐसी आपकी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करनी है, ऐसे 3-4 कॉलर्स को मिलूंगी ऑन एयर एंड उसमें से मुझे सबसे एक्साइटिंग स्टोरी जो लगी उनको मिल सकता है यू नो द डैलस हीरो डैड अवार्ड। और इस अवार्ड के साथ ही साथ उनको मिल पाएगा $50 का फादर्स डे गिफ्ट स्पॉन्सर्ड बाय ओमर ख्वाजा विच इज द एक्सीडेंट इंजरी लॉयर। सो स्टूडियो का नंबर 9722355555 आपको मेरे साथ आपकी आपके डैड की रियल लाइफ स्टोरी शेयर करनी है एज टू व्हाई ही इज योर रियल लाइफ हीरो डैड।

Omar Khwaja presents the Dallas Hero Dad Award, celebrating the dads who show up, stand strong, and put family first. On this Father's Day, I invite all of my listeners to call the studio and share a real life story about why your dad is your hero. Studio ka number 972-235-5555. 3-4 callers ko on air lungi aur sabse achhi aur the RJ will select the story that stood out and the most and announces the Dallas Hero Dad of the Day Award. स्टूडियो का नंबर है 2097235555. आपके डैड के बारे में ऐसी स्टोरी शेयर कीजिए मेरे साथ और जो कि आपको ये बताने के लिए मजबूर करती है कि वाई योर डैड इज योर रियल लाइफ हीरो डैड. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ. 3-4 कॉलर्स में से सबसे एक आधे कॉलर की स्टोरी सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग होगी और स्टूड आउट करेगी उनको मिलेगा डैलस हीरो ऑफ द डैड अवार्ड.

ब्यूटीफुल गाना दोस्तों मोहित चौहान की आवाज में सुने थे आप चिकन फ्रॉम द मूवी रॉकस्टार। ऐसे ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाने यहाँ पर चलते रहेंगे ओनली ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पर, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। आपको बता देती हूँ दैट ड्रीम होम मॉर्गेज हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998। दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड देयर एक्सपर्ट टीम डिलीवर स्ट्रेस फ्री टेलर मॉर्गेज सोल्यूशन एंड मेक योर ड्रीम होम अ रियलिटी विद ड्रीम होम मॉर्गेज। अगर आपको मोर डिटेल्स चाहिए है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, द नंबर टू कॉल इज 972-245-5626, और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज dreamhomemortgage.com। फादर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है दोस्तों, वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द वंडरफुल डैड्स आउट देयर।

such a beautiful song. Arijit Singh और हंसिका पारी की आवाज में सुन रहे थे आप टेकन फ्रॉम द मूवी आजाद. इतना इतने प्यारे गाने हैं ना दोस्तों इस मूवी के. आई डोंट नो इफ यू गाइज वॉच दिस मूवी और नॉट आज़ाद, बट बहुत ही मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी ये मूवी. राशा थडानी जो कि रवीना टंडन की बेटी है, उनका डेब्यू मूवी है ये. और अमन देवगन जो कि अजय देवगन के नेफ्यू है, उनके ये मूवी पिक्चराइज है.

अमित त्रिवेदी का म्यूजिक है इस पूरे म्यूजिक को, एल्बम को, और बहुत ही अमेजिंगली गाया है यहाँ पे इस गाने को अरिजीत सिंह और हंसिका पारिक ने. स्पेशली दिस लाइन ऑफ दिस सॉन्ग इज सो ब्यूटिफुल एंड इतने यू नो शिद्दत से और इतने इमोशन से गाई है हंसिका पारिक ने. इट गोज लाइक दिस.

जब भी कोई अच्छा गाना होता है उसकी दो लाइनें अगर मैं ना गुनगुनाऊं तो वो गाना तो पास हो ही नहीं पाता है। इसी के साथ आपको लेकर चलती हूँ अगले गाने की तरफ। दिस इज वंस अगेन अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग संग बाय हंसिका पारिक, और ये गाना भी सुनने के लिए मुझे बहुत पसंद आता है। आई एम श्योर आप सभी को भी अच्छा लगेगा। एंजॉय दिस ट्रैक।